इंस्टाग्राम पे पधार रहे हैं पधार रहे हैं, ऐसे बोलना चाहिए था. नाउ दिस इज नाउ इट फील्स मोर लाइक इट व्हेन यू डू इट. जिस तरह की टोन यूज की जाती है ना, वैसे करो तभी जाके फील आती है. नहीं, 8 बजे के इस बार पहुंच चुके हैं. गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7 अंतराब के साथ यहाँ पर चल रहा है मस्ती का मंत्रा. एंड भाई लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉलीवुड के नवाब ने फाइनली सोशल मीडिया की दुनिया में एंट्री मार ली है, और एंट्री भी ऐसे कि लोग कह रहे हैं कि वाह नवाब साहब वाह क्या बात है. आई एम टॉकिंग अबाउट सैफ अली खान. यस, आफ्टर इयर्स एंड इयर्स ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम पब्लिक सोशल मीडिया, व्हिच वाज अ गुड थिंग. सैफ तुमने क्यों किया? लाइक आई वाज सो ऑलवेज वाओ अबाउट इट, बट देन ओके योर कॉल. सो सैफ अली खान हैज फाइनली मेड हिज ऑफिशियल इंस्टाग्राम डेब्यू, कल ही के डेट में उन्होंने किया. एंड यस ऑफ कोर्स हिज अकाउंट इज सैफ अली खान पटौदी. बट हियर इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, इंस्टाग्राम पे आते ही नवाब साहब ने सिर्फ एक ही अकाउंट को फॉलो किया. गेस बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये. दैट वन पर्सन इज ऑब्वियसली उनकी वाइफ करीना कपूर खान, एंड करीना ने भी उनको फॉलो बैक कर लिया. मतलब दुनिया भर के लोग इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाने में लगे हुए. सैफ कह रहे हैं मुझे तो मेरी बेगम ही काफी है. सर करना पड़ता है सर, आपको भी तो पता ही है सोशल मीडिया के बिना कैसे कभी क्या ही हो पाया है आज की डेट में. सो या उनका फर्स्ट पोस्ट, सो इट वाज नथिंग लाइक अ ग्लैमरस रेड कार्पेट पिक्चर, नो फैंसी अनाउंसमेंट, कोई ड्रामेटिक एंट्री नहीं. इंस्टेड ही शेयर्ड पिक्चर्स फ्रॉम पटौदी लाइब्रेरी, इंक्लूडिंग वेयर ही इज रीडिंग अ बुक, एंड द कैप्शन इज पटौदी लाइब्रेरी जजिंग बुक्स बाय देयर कवर. Quite Saif, isn't it? Now, backstory kuch aisi hai. 2024 ke interview mein Saif had actually revealed that he already had a secret Instagram account. Sabke hote hain. Ranbir Kapoor ne bhi ye admit kiya hua hai ki hai. Dusre account se wo jo hai sabke accounts check karte rehte hain. Now, he used to browse occasionally but did not really enjoy the endless scrolling. In fact, unhone ye kaha tha that every time he used Instagram, he would think about deleting it, but somehow never did. Sir, hum bhi ye sochte rehte hain har roz. He also loved the peace and privacy of not having a public social media account. But ab dekhiye, 2 years later, Nawab Sahab is officially on Instagram. And yeah, sometimes we say ki main to ye kabhi nahi karunga. Ye hum log kehte hain na, aur phir kisi point pe hum wahi cheez kar rahe hote hain. So yeah, never say never. People change, preferences also change, and kabhi kabhi hamara perspective bhi change ho jata hai, and that's perfectly okay. Well, ye to ho gayi ye wali baat, aur yahan par subah subah music ke sath aur meri baaton ke sath all the way in India log padhai kar rahe hain, aur padhai ke sath sath keh rahe hain ki ek kitabon wala gana ho jaye. तो मैं तो समझ तभी गई थी जैसे इन्होंने किताबों वाला कहा था, बिकॉज द मोमेंट यू से किताबों वाला बॉलीवुड गाना, आई मीन हाउ कैन यू नॉट थिंक अबाउट दिस वन फ्रॉम बासीकर. लेट्स गो.

0: जीतने का मौका भी। Zaxxon of India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition standia, cultural entertainment and family fun. 16th से 25th October तक Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo में. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxalam India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxalamindia.com.
1: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स, मस्ती का मंत्र विद आरजे अंत्रा।
2: हलवा काफी नहीं था? नहीं था काफी, अब हम और मिठाइयों की बात करेंगे। ओ माय गॉड, रेडियो मस्ती 24/7 अंतरा के साथ, और यहाँ पर चल रहा है मस्ती का मंत्र। 8:00 हो चुके हैं 21 मिनट। भाई दिवाली के टाइम पर मिठाई की बात ना हो, मतलब आने वाला आई नो, बट ऑलरेडी ये फेस्टिव सीजन तो चल ही रहा है, राइट? भाई कैसे कंट्रोल करते हैं, और कंट्रोल कहाँ किया जाता है, बट होता नहीं है। एंड उसके बाद जब हमारे जैसे लोग यहाँ पर आकर इतनी खूबसूरत बातें करते हैं, ऐसी ऐसी मिठाइयों की, शाही महारानी की मिठाइयों की बात करते हैं, तो आप सोचो हमारे पे क्या ही गुजरती होगी। एंड आई मीन फ्रॉम शाही महारानी का खास बात यह है कि फ्रॉम द गिफ्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट इज सो अमेजिंगली, इतना ब्यूटिफुल सुनके, ट्रेजर शुगर एंड स्पाइस वाला जो उनका बॉक्स है, इट इज सो गॉर्जियस। आई मीन I'll tell you what, like कितनी बार से ऐसा हो रहा है कि I get that specifically क्योंकि मुझे after the mithais and everything it gets over I use that dabba like a box, उसमें छोटा छोटा सब कुछ रख लेती हूँ बाद में। yeah, so that is one more thing I do it, but it's really pretty and really I like the design of it. So well, let's talk about the festive gifting experience. शाही महारानी जो है सिंगापुर में हर साल लाते हैं। so Of course, 1983 से इंडियन डाइनिंग स्टोरी सिंगापुर की शाही महारानी ने अपनी कहानी यूं ही लिखते हुए आ रहे हैं। एंड दिस ईयर दिवाली फेस्टिव कलेक्शन 2026 ब्रिंग्स टुगेदर दिस ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप विद सम रियली इंटरेस्टिंग कंटेम्प्रेरी फ्लेवर्स। इनका ब्रांड न्यू ट्रॉपिकल सनराइज, व्हिच आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर, बिकॉज कोकोनट एंड पाइनएप्पल लड्डू है ये बेसिकली, एंड ये जो कॉम्बिनेशन है मुझे काफी अच्छा लगता है। लड्डू में ट्रॉपिकल ट्विस्ट लाइक कमाली कर दिया। ग्राम एंड गोर डिलाइट, देन उसके अलावा द मैंगो लवर्स हैव दिस मैंगो सरप्राइज, ऑफ कोर्स द क्लासिक्स आर आल्सो देयर, मिल्क केक, स्टफ कैश्यू रोल्स विद पिस्ताशियोस एंड डेट एंड नट वाली वो बर्फी, आई टेल यू। और इनकी मिठाई भी इट्स फ्रेशली हैंडक्राफ्टेड, इनके हलवाई जो है वो बनाते हैं यूजिंग केयरफुली सिलेक्टेड इंग्रेडिएंट्स, कोई एडेड प्रिजर्वेटिव्स नहीं। प्लस दिस टाइम ये जो गॉर्जियस इनके फेस्टिव गिफ्ट कलेक्शन है, यू कैन गो एंड चेक देम आउट। सेलिब्रेशन बॉक्सेस है, रॉयल फेस्टिव बॉक्सेस हैं, एंड द ट्रेजर सीरीज इज ऑलवेज देयर। सो ऑफकोर्स कुछ सेलेक्टेड बॉक्सेस में इस बार जो है कुछ आर्टिसन कैंडल्स जो है, जो हैंडक्राफ्टेड है बाय द आर्टिसन फ्रॉम रूरल इंडियन विलेजेस, वो भी आपको मिलेगा। सो वेन यू गिव वन ऑफ दीज कलेक्शन, यू आर नॉट जस्ट शेयरिंग स्वीटनेस, यू आर ऑल्सो सपोर्टिंग समवन्स क्राफ्टमैनशिप एंड लाइवलीहुड। दिवाली की रोशनी थोड़ा और दूर तक पहुंच जाती है, नहीं? And yes, for all those who love a little bit of namkeen with their mithai, ye jo inke jars hai of namak mare and the spiced varieties, worth trying completely. Festive boxes jo hai starts from $78 plus. Orders are open, so visit kare www.shahimaharani.com aur wahan jaakar Royal Diwali Sweets Collection choose kare and wahan jaakar check out kare everything. It is going to be aapke muh mein bhi aise hi paani aa jayega. Chashni mein ghula hua gana, पता हो गाने का नाम भी चाशनी। कमिंग अप नेक्स्ट, गुड मॉर्निंग।

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: मैं तो पूरी डूब ही गई थी इस गाने में। रेडियो मस्ती 24/7 अंतरा के साथ आप हो यहाँ पर चरो मस्ती का मंत्रा, लेकिन टाइम फॉर ट्रैफिक अपडेट। हैवी ट्रैफिक मिलेगा इस वक्त आपको ऑन PIE टुवर्ड्स अचांगी बिटवीन KPE एंड CTESLE। एक एक्सीडेंट की खबर ऑन क्लेमेंटी एवेन्यू 6 टुवर्ड्स PIE आफ्टर कॉमनवेल्थ एवेन्यू वेस्ट, अवॉइड करें लेन नंबर 1। और मिलेगा हैवी ट्रैफिक ऑन PIE टुवर्ड्स ट्वास बिटवीन पायनियर रोड नॉर्थ एंड चरोंग वेस्ट एवेन्यू 2। वेल, ये था इस गाने का ट्रैफिक अपडेट। एंड यस, वी वर जस्ट अ वाइल अगो टॉकिंग अबाउट हेज एंड एवरीथिंग, एंड बस यही कह रहे थे कि बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। वेल, उसका अपडेट लेकर आती हूँ जस्ट आफ्टर दिस गाना। गुड मॉर्निंग,
3: यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कीपिंग यू कनेक्टेड एनीवेयर एनीटाइम द देसी वे।

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space, dear मस्ती, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी,
2: क्यों सोचते ही आया ना याद वो दिवाली वाला शाही स्वाद।
3: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। Shahi Maharani's Royal Mithai and Namkeen. For more details, call 6235-8840 or log on to shahimaharani.com.

0: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
1: हाँ जी, चलिए इसका भी अपडेट ले लेते हैं। 8:00 हो चुके हैं, 40 मिनट, रेडियो मस्ती 24/7 अंतर आपके साथ, मस्ती का मंत्र चल रहा है। सो वेल, हेज जो है वो बहुत ज्यादा कुछ अच्छी खबर नहीं ही ला रहा है। एयर क्वालिटी अक्रॉस सिंगापुर कंटिन्यूज टू बी कंसर्न दिस मॉर्निंग एज वेल। भाई, सुबह की रिपोर्ट के हिसाब से एज ऑफ 7 AM 13 अक्टूबर 24 आवर का PSI रीडिंग्स अक्रॉस ऑल 5 रीजन्स ऑफ सिंगापुर वर इन unhealthy range. And if we look at the numbers, the west recorded PSI of 173, central 167, east jo hai 150, south 134 and north 126. Yeah, PSI stands for pollutant standard index, and the readings between 101 and 200 falls in unhealthy category. Magar aap ghar se nikal rahe, please make sure that you are using the masks and everything, and especially for those who does outdoor workout and everything, please, बहुत ही जरूरत है अपना ध्यान रखने की इस टाइम पर। अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ओवर दिस इज सिंगापुर के मिनिस्टर ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड द एनवायरनमेंट ग्रेस फू जो है, उन्होंने कहा दैट सिंगापुर स्टैंड्स रेडी टू असिस्ट इंडोनेशिया इन टैकलिंग फॉरेस्ट फायर्स एज रीजनल डिस्कशंस जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। शी हैज ऑल्सो हाईलाइटेड दैट वेरी ड्राई वेदर कंडीशंस एसोसिएटेड विद एल नीनो व्हिच आर एडिंग टू द कंसर्न्स अबाउट फायर एंड द हेज इन द रीजन। एंड यू नो, समटाइम्स हमको लगता है हेज इज जस्ट अबाउट reduced visibility, आसमान धुंधला सा लग रहा है, buildings clearly नहीं दिख रही है, but it's also about the air we are breathing, and there are so many people who are getting sick because of it. A lot of our listeners as well, and I really hope that they all get well soon. Take care of yourself. It is just so very important. Stay informed, stay safe, Singapore. And yes, official haze updates के लिए NEA की advisories जो है जरूर check करते रहिए। And of course, हम लोग यहाँ पर जो है time to time update तो देते ही रहेंगे। Well, Radio Masti 24/7 पर फिलहाल तो haze is almost singing the same thing like the Gaana Next की लुट ले गया, और कितना बस करो, अब तो बस ही करो।

0: some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
1: It's a Masti Partner event.
2: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा, डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा It's time for Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. 3 spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration. Har Tuesday, ek naya twist. मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा.
3: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 पर अंतराप के साथ. एंड यस, सिंगापुर गुजराती सोसाइटी का सिंगापुर स्कूल की ओरिजिनल नवरात्रि. भाई कुछ ही टिकने बाकी है. अगर आपने अभी तक नहीं लिया है देन क्या कर रहे हो आप. जस्ट लॉग ऑन टू sgs.org.sg/Navratri2026. वंस यू गो देयर यू विल फाइंड आउट. वहां पे जाकर देखिए कि कौन से दिन की टिकट्स जो है जो अवेलेबल है. और जरूर जरूर जाइए. लाइक इट इज लाइक नेवर नेवर बिफोर. It is amazing, right? एक तो वीकेंड सेट हो जाता है, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. बट उसी के साथ साथ दूसरे थाने लगूना, आई मीन दैट इज वन अमेजिंग अमेजिंग वेन्यू वेयर दिस इज गोइंग टू हैपन. सो वेल या जरूर जरूर जाए. हालांकि ये घंटा अब रैप अप करने का टाइम आ चुका है. बट देर इज समवन जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी काफी योगदान अपना देती हुई जा रही है हाल फिलहाल में. भाई अदरवाइज उनके फिल्मों के बारे में या फिर उनके प्रेजेंस के बारे में उतनी बात नहीं हो रही है, बट इस कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर जरूर उनकी बात की जा रही है. और मे बी शी वॉन्ट्स टू से ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिकॉज शी वॉन्ट्स टू स्टे इन द न्यूज. कौन है ये, कौन है ये, बताएंगे बताएंगे घंटे के उस पार बताएंगे. लेकिन फिलहाल इस घंटे को परिणीति चोपड़ा के स्टाइल में साथ आगे बढ़ते हुए लेकर जाएंगे. और रेडियो मस्ती 24/7, जी हाँ बिल्कुल, स्टे ट्यून्ड बिकॉज बहुत मसालेदार गॉसिप लेकर बिल्कुल हाजिर होने वाली हूँ. गुड मॉर्निंग.

सुबह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan. Good morning. Radio Masti 24/7, 9 बजकर हो चुके हैं यहाँ पर 5 मिनट। मैं अंतरा यहाँ पर आपके साथ एंड चल रहा है मस्ती का मंत्रा। इट्स ट्यूसडे मॉर्निंग, इट्स आल्सो रेणुका'स बर्थडे, इट्स आल्सो माय जिमिना'स बर्थडे। आज तो मतलब खास दिन है। वेल, पिछले घंटे में मैंने यही कहा था, टीजर छोड़ा था कि कॉन्ट्रोवर्सी गॉसिप करेंगे। बिल्कुल आओ गॉसिप करते हैं भाई, इसीलिए तो हमारा दिल लगा रहता है। नहीं सो वेल, जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है यहाँ पे, नाम का अगर मैं लूं गोविंदा, आप कहोगे ओहो सुनीता जी बैक इन एक्शन। ना, सुनीता जी तो हमेशा से इन एक्शन थी, बट अब कोमल जी आल्सो इन एक्शन नजर आ रही है। सो फॉर सम टाइम देयर हैव बीन रूमर्स ओके अबाउट गोविंदा की पर्सनल लाइफ और उनकी शादी शुदा जिंदगी विद सुनीता आहूजा। ओके, इस कॉन्ट्रोवर्सी में ये नाम जो है जो सामने आया है, कोमल रानी इनका नाम है, हु हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स, गोविंदा जी की जिंदगी में काफी खास स्थान है इनका। सो वेल, लेट मी बी क्लियर, दीज आर जस्ट लाइक रूमर्स एंड कोई एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स नहीं है। बहुत जरूरी है ये लाइन डालना और डिस्क्लेमर डालना। बट कोमल रानी जो है रिपोर्टेडली रिस्पॉन्डेड क्वाइट स्ट्रॉन्गली टू द एक्ट्रेसेस हु हैव बीन कॉमेंटिंग ऑन द कॉन्ट्रोवर्सी। भाई एक सोशल मीडिया के पोस्ट में उन्होंने शी क्वेश्चन कि वाई पीपल आर जजिंग हर when they had supposedly remained silent about other actors having multiple marriages. जब उन्होंने किया तो उनको कुछ नहीं बोला, तो आप अभी मुझ पे क्यों उंगली उठा रहे हो या जज कर रहे हो? And she did not just stop there. So without naming anyone, she reportedly accused certain actresses of getting involved in controversy simply to remain relevant and even made rather personal remarks about their marriages. But कोमल रानी जी आप भी तो ऐसा ही कुछ कर रही हैं, नहीं मतलब जस्ट सेइंग। ओके, बात शुरू हुई एक एलिजेंट रिलेशनशिप से, अब पूरी इंडस्ट्री के पर्सनल रिलेशनशिप्स तक पहुंच गई है। बट यू नो व्हाट आई you know find very interesting, how quickly we become judges of somebody else's personal life, right? Ek social media pe kuch headline aati hai aur bas uske baad comment section mein to jaise puri court ki proceedings shuru ho jati hai. Main to aksar kehti hu ki jo news hoti nahi hai wo alag, but usse bhi zyada interesting hota hai jo comment section. Oh my god, like sometimes mind hi blow ho jata hai. But pata nahi, whatever it is, सुनीता आहूजा जो है वो तो मंदिर टू मंदिर जा रही है कि हे मेरे पति बस खुश रहे और कुछ नहीं चाहिए। फिर दूसरे दिन वो कह देती है कि नहीं ऐसा हो रहा है, गुस्सा एक दिन प्यार एक दिन गुस्सा, समझ नहीं आ रहा है चल क्या रहा है। एनीवेज, जो अच्छे से समझ में आता है हम तो वही करते हैं, बाकी अपडेट्स देना से तो हमारा ही काम है। जूबी डूबी पंपारा करते हुए आगे बढ़ते हैं। सोनू निगम, श्रेया घोषाल, कमिंग अप नेक्स्ट फॉर यू ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

लाइफ पर फिल्म बनती है तो नेचुरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस इंसान को एकदम बहुत ही बड़ा हीरो की तरह पोर्ट्रे किया जाएगा. लेकिन यहाँ पे निकम साहब ने कहा मुझे भी ग्लोरिफाई मत करना. एंड द फिल्म मेकर्स रिपोर्टेडली ऑब्टेन्ड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द पीपल कंसर्न्ड इंक्लूडिंग द जज हु एक्चुअली सेंटेंस्ड कसब टू डेथ. एंड देन देयर इज ऑफ कोर्स हमारे राजकुमार राव. How seriously he takes these and how well he performs in these kind of roles. Reportedly, he hadn't met Nikam Sahab before filming began, but studied videos of his courtroom ke arguments, his expressions and mannerisms to prepare for the role. And yeah, wo Nikam Sahab ne khud bhi praise kiya hai unke portrayal ko. And it's quite interesting. Mujhe bahut aksar lagta tha ki ek actor ki zindagi bahut hi zyada kafi ek to hard work to isme bhi bahut zyada jata hai. But then you can become whatever. Whatever you want to. That is the magic of being an actor. And yeah, a lot of prep goes behind that as well. तो बात तो ये बहुत सारी अच्छी लग रही है और बीच बीच में ऐसी जो है थोड़ी हटके फिल्म्स भी आती रहनी चाहिए. नहीं, मन लगा रहता है. It doesn't look like it's a waste of time. Love is a waste of time, is it? I don't know, but the gana says so, तो हम मान लेते हैं. और इतने प्यार से कोई गा के बताए तो हम definitely मान लेते हैं. Good morning.

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: घड़ी में बजने वाले हैं 9:30 और यहाँ पर वक्त हो चला है कि आपको बताए कि क्या चल रहा है सिंगापुर के सड़कों पर। ट्रैफिक अपडेट में वेकअप ब्रेकडाउन आपको मिलेगा एवाईई पर टुवर्ड्स एमसीई आफ्टर सीटीई, अवॉइड करें लेन नंबर 3। वेकअप ब्रेकडाउन की खबर है ऑन बीके टुवर्ड्स बीआईई बिफोर एसएलई, और मिलेगा हैवी ट्रैफिक इन सीटीई टनल टुवर्ड्स एसएलई एट मर्चेंट रोड एग्जिट। वेल, ये 10 घंटे का ट्रैफिक अपडेट। एंड भाई देख ले आंखों में आंखें डाल, let not sing, that is the song coming up next for you on Radio Masti 24/7.
3: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians anytime, anywhere.

0: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी।
1: क्यों, सोचते ही आया ना याद वो दिवाली वाला शाही स्वाद।
2: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्रामीण गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन जार्स टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। शाही महारानी रॉयल मिठाई एंड नमकीन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 6235-8840 और लॉग ऑन टू shahimaharani.com।
3: योर वीकली मूड लिफ्ट मंत्रा ओनली विद RJ अंतरा।
1: टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं वहां पे। ये जो है अक्सर बातें सुनी जाती है व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमारी जो इंडिया में है। रेडियो मस्ती 24/7 पर मैं अंतरा आपके साथ मस्ती का मंत्र चल रहा है। गुड मॉर्निंग। यस, जब हम कहीं और जाते हैं ना, किसी और कंट्री में काम करने के लिए, और वहां का वर्क कल्चर देखते हैं, तो सडनली रियलाइज होता है दैट थिंग्स कैन एक्चुअली हैपन ऑन टाइम एंड हैपन डिफरेंटली। सो वेल, ये जो कहावत है कि आप तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आए, वो ऐसे ही नहीं बना हुआ है। अ लॉट ऑफ टाइम्स अंटिल डेट, अभी जब मैं जब जाती हूँ इंडिया, तो कई बार ऐसा होता है जो निश्चित समय तय किया जाता है वहां पे, उस टाइम पे अभी भी कोई काम नहीं होता है। वेल, एक्टर विद्युत जामवाल जो है शेयर्ड समथिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग अबाउट अपना एक्सपीरियंस वर्किंग इन हॉलीवुड। सो काफी एक्शन सीक्वेंसेस एंड मार्शल आर्ट स्किल्स एंड ये सारी चीजों को लेकर वो अक्सर जो है बातों में रहे हैं, चर्चा में रहे, इसको कहते हैं। ही हैज बीन वर्किंग ऑन दिस हॉलीवुड डेब्यू अपना स्ट्रीट फाइटर। हाल ही में जब उन्होंने प्रमोशंस भी किए थे, तो उन्होंने बड़ी ही अलग तरह की टेक्निक, जोन आउट होने की टेक्निक जो है ना, खड़े खड़े बिल्कुल वो भी दिखा रहे। एंड इट्स अ थिंग टू हैपन, नो, हर कोई नहीं कर सकता है। सो ही ऑल्सो रिसेंटली स्पोक अबाउट द ह्यूज डिफरेंस ही नोटिस्ड बिटवीन बॉलीवुड एंड हॉलीवुड का वर्क कल्चर। ही सेड दैट वहां पर जो है बाहर गांव में, यानी कि हॉलीवुड में, देयर इज प्रैक्टिकली नो कॉन्सेप्ट ऑफ अराइविंग लेट ऑन सेट। मतलब शूटिंग का कॉल टाइम 8 बजे है तो 8 बजे ही है। ये नहीं कि 8 बजे का मतलब 9:30 भी बच सकते हैं और फिर चाय पी के 10 भी बच सकते हैं और उसके बाद देखा जाएगा कि काम शुरू होगा कि नहीं होगा। सो he said that the technicians working on the Hollywood sets are paid extra for every single minute of overtime. Every single minute, because they know that they'll be compensated fairly. ये hesitate नहीं करते हैं to work beyond their scheduled hours when required. He also acknowledged that जो है India has its own rules and system, that is for sure. And while it may take time to reach that level of working culture, there's definitely room for improvement. And वैसे भी मुझे ऐसा लगता है Bollywood Hollywood के बारे में भी बात नहीं है, it's about something we all experience हमारे workplaces में भी. Respecting अगले बंदे का time and respecting people's effort, that is so very important, which I've also learned. मतलब सिंगापुर में भी बहुत ही ज्यादा ये जरूरी होता है, एंड आई थिंक खुद की पर्सनैलिटी में भी ये चीज रखना बहुत ही जरूरी है। जितनी आप दूसरे के टाइम की रिस्पेक्ट करो, उतने आप अपने टाइम की भी इज्जत रखो कि हाँ भाई, इट हैज टू बी, द फीलिंग हैज टू बी म्यूचुअल, माई फ्रेंड, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट कर लिया है आज के मस्ती का मंत्र में ऑन रेडियो मस्ती 24/7। कमिंग अप नेक्स्ट इज नेहा कक्कर, जो आजकल कहीं गुम गुम हो रखी है, अब फॉर गुड और बैड ये नहीं पता, बट साथ में है अरिजीत सिंह, खराब था कि साउंड ट्रैक से दिस इज व्हाट इट्स सेइंग।

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से। सम इनविटेशंस आर सिंपली टू स्टाइलिश टू मिस। This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
1: It's a must-be partner event.

0: एक नया ट्विस्ट, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा।
1: ओह माय गॉड, हमने तो ये एग्जीबिशन की बात ही नहीं करी। कैसे नहीं करी, करनी ही चाहिए, बिकॉज जब जब सिंगापुर में ऐसे इवेंट्स हो, एग्जीबिशंस हो, तो डेफिनेटली वी हैव टू इंश्योर दैट वी गो ओवर देयर, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फेस्टिव सीजन। गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7 अंतराब के साथ यहाँ पर चल रहा है मस्ती का मंत्रा। भाई दिवाली की पार्टीज ऑलरेडी लाइन अप होनी शुरू हो चुकी है, वेडिंग्स भी है, वार्डरोब होते ही ऐसा लगता है कि पहनने के लिए कुछ है ही नहीं। फॉरएवर वाला सवाल, यस दैट सवाल आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड दिस इज डिस्पाइट हैविंग वार्डरोब फुल ऑफ क्लोथ्स। या राइट, वेल हाई लाइफ एग्जीबिशन सिंगापुर, इट्स ऑफ कोर्स इट्स हैपनिंग टुडे एंड टुमारो, 13th and 14th of October। भाई आज की डेट में बिल्कुल एकदम, एक तो वैसे भी इतना खास खास वाला दिन है। सो वेल, इफ यू लव फैशन, ब्यूटिफुल ज्वेलरी, गॉर्जियस होम डेकोर, एवरीथिंग स्टाइलिश, दिस इज वन एग्जीबिशन यू डोंट वॉन्ट टू मिस। 75+ लीडिंग इंडियन डिजाइनर्स ऑल अंडर वन रूफ, एंड या वी आर टॉकिंग अबाउट स्टनिंग फेस्टिव कलेक्शन एंड कुट्योर स्टेटमेंट ज्वेलरी, लक्जरी एक्सेसरीज एंड होम डेकोर के बहुत ही ब्रिलियंट पीसेस एंड एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग अंडर वन रूफ, फेस्टिव पार्टी आउटफिट, शो स्टॉपर, सब कुछ आपका एक साथ एक ही छत के नीचे आ जाते हैं। यस एंड या यू कैन जस्ट मेक अ प्लान। अगर आपने पहले हमारी ये बात नहीं सुनी थी आज है, तो कल का प्लान बना लीजिए यार। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक हॉलिडे इन सिंगापुर ऑर्चर्ड सिटी सेंटर में हो रहा है, एंड या आई थिंक फेस्टिव शॉपिंग का असली मजा तभी है जब आप एक आउटफिट लेने जाते हो और 3 डेफिनेटली आप लेकर वापस आओगे ही आओगे। वेल या जस्ट डोंट ड्रेस फॉर द ओकेजन, मेक द ओकेजन रिमेंबर आपका स्टाइल, एंड रिमेंबर दैट यू गॉट दैट स्टाइल फ्रॉम हाई लाइफ एग्जीबिशन, एंड रिमेंबर वेयर यू हर्ड इट, राइट? ऑफ कोर्स रेडियो मस्ती 24/7।

0: your weekly mood lift mantra. Only with RJ Antra.
1: और इसी के साथ रेडियो मस्ती 947 पर जी हाँ आपसे अब ले जाता तो लेने का टाइम आ चुका है. राइट मस्ती का मंत्रा आप सुन रहे थे अंतरा के साथ यहाँ पर. एंड या इट्स अ वेरी वेरी नाइस डे. वी ऑल नो इट्स 13th of October. जी हाँ, जिसके लिए हम लोग आई थिंक जनवरी से ही वेट करने लगते हैं. नहीं पर इसी के साथ साथ भाई विशिंग रेणुका वेरी वेरी हैप्पी वाला बर्थडे. भाई आज तो शुरुआत ही मैंने उनको बर्थडे विश करके करी थी. एंड इवन मोर स्पेशल बिकॉज इट इज माय फेवरेट आर्टिस्ट बर्थडे एज वेल. तो भाई है ही, बन ही गया है पावन पावन दिन. लास्ट सॉन्ग जो है मैं उन्हीं के लिए प्ले करते हुए जा रही हूँ. एंड आई होप शी हैज अ वंडरफुल डे अहेड. काम तो होता रहेगा, उनके बिना तो हमारा काम भी नहीं चलेगा. बट बाकी पार्टी कहाँ पे लेनी है, कैसे लेनी है, वो उसके लिए संपर्क करें आप उन्हीं से क्योंकि हमें भी जानना है कि हमें पार्टी लेने कहाँ पे पहुंचना है. वेल मेरी आपकी मुलाकात वापस से होगी शाम के टाइम पर विद योर मस्ती. दिल से टिल देन यू हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड. इट्स वी आर गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक. अभी म्यूजिक कैफे आएगा एंड फिर हमारी आरजे नुपुर आएंगी यहाँ पे मस्ती मॉर्निंग्स लेकर. सो वी हैव गॉट इट ऑल प्लान्ड थ्रू आउट द डे. रेडियो मस्ती 24/7 पर आई होप यू हैड अ गुड टाइम विद मी दिस मॉर्निंग. एंड या प्रोडक्टिव जाएगा दिन, बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा. मैं अब मैंने बोल दिया है तो जाएगा ही. एनीवेज बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी बर्थडे रेणुका.
2: पार्टी तो कभी से शुरू हुई है
3: पर भाई, भाई, भाई, भाई, भाई, भाई, भाई, भाई, भाई मेरी तो एंट्री नहीं हुई है.

0: पहुंचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे?
3: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी।
4: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो।
5: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
6: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है? ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
7: मुझे चांद पे ले चलो।
6: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे। ट्यून इन टू
8: रात।

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: सो लाइफ ना, आपके पासपोर्ट फोटो जितनी खराब भी रही है और आपके सोशल मीडिया की डीपी पिक्चर जितनी अच्छी भी रही है, कहीं ना कहीं बीच में एक पेंडुलम जो है ना, वो लेफ्ट राइट कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लेफ्ट राइट चलते रहना चाहिए। अगर सब कुछ अच्छा या बुरा होने लगेगा तो लाइफ बहुत ही मोनोटोनस हो जाएगी, डोंट यू थिंक सो? हाँ, एनीवेज मैं आरजे नूपुर ऑन द स्नो सुबह सुबह आप सभी का मस्ती मॉर्निंग शो पर स्वागत करती है। एंड द पॉइंट इज कि आज का दिन थोड़ा सा खास है। देखो, आने वाले जो फेस्टिव डेज हैं उनकी वजह से तो खास है ही, लेकिन आज हमारी बॉस रेणुका का है बर्थडे, तो इस दिन को ये और ज्यादा बात खास बना देती है। चलिए चलिए चलिए, खास बातें हमारे ऑफिस में तो होने वाली है, खास स्नैक्स और खास पार्टी का इंतजाम तो हमारे सामने हमें दिख रहा है, लेकिन खास गाने डेफिनेटली रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मेरे यानी आरजे नूपुर के साथ आपको सुनाई देने वाले हैं। सो डेफिनेटली डोंट गो एनीवेयर, आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट वाइल, क्योंकि देखो बॉस का बर्थडे होता है ना, तो मतलब माहौल बनाकर रखना पड़ता है, डोंट यू थिंक सो? चलो आती हूँ मैं, आती हूँ।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में
0: भाई, पुराने जमाने की वो बातें जो आज के जमाने में भी इंटरेस्ट डेवलप कर रही हैं, वो कौन सी है भाई? वो ये है कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और उनकी वो लाइफ जो हमें पता नहीं चली। क्यों? क्योंकि तब डिजिटल एरा नहीं था, गॉसिप करने का, पेपराजी करने का इतना ज्यादा चलन नहीं था। लेकिन अब सारी पुरानी बातें निकल निकल के बाहर आ रही है। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आज पर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ। और पता चला है कि अमिताभ बच्चन एंड जया बच्चन जब एक दूसरे को डेट कर रहे थे तो वो फेज भी कोई आसान फेज नहीं था, डिफिकल्ट था। क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन जी जो है ना, एक इजी बॉयफ्रेंड कैटेगरी में नहीं थे। वो बहुत ही इंट्रोवर्टिव थे, बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव थे, हर बात दिल खोलकर बोलते नहीं थे। और फिर इनकी जब शादी हुई और उसके बाद जो इधर उधर की और बातें निकल कर आई, मतलब जो कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस आए इनकी लाइफ में किसी थर्ड एक्टर की एंट्री से, वो डिफिकल्ट नहीं था। और आज तक ये बातें चलती चली आ रही हैं। आपको भी पुरानी बातों में इंटरेस्ट तो है? नहीं नहीं, नजर तो आ रहा है। हाँ, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर ऐसी ही पुरानी नई हर तरह की बातें कर रही हैं आपका इंतजार मेरी जान, मस्ती मॉर्निंग शो।

0: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी,
1: क्यों सोचते ही आया ना याद वो दिवाली वाला शाही स्वाद।
2: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। शाही महारानी रॉयल मिठाई एंड नमकीन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 6235-8840 और लॉग ऑन टू shahimaharani.com।
3: Do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
4: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. DJ.

0: हाँ
1: या चुप रहूं
0: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
0: क्या है।

0: सुन टका टक। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
1: You know what? आपको ना एक बार कोई हल्का सा वॉर्न करता है, दूसरी बार थोड़ा ज्यादा करता है, और तीसरी बार में आपको जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। क्यों? क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि आप ना अंदर से खराब है। बिल्कुल बिल्कुल। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नूपुर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। एंड द पॉइंट इज कि अंदर से खराब वाली जो बातें है ना, वो पेपराजी फोटोग्राफर्स की थोड़ी ज्यादा निकल कर आ रही है। हाँ, कि ये लोग तो खराब कैटेगरी है, लेकिन असलियत यह है कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस खुद इन पेपराजी फोटोग्राफर्स को बुलाती हैं, अपने आप की फोटोज खिंचवाती हैं और सोशल मीडिया पे डलवाती हैं। एनीवेज, अब आ चुका है सलमान खान को बहुत तेज गुस्सा। राइट, सुन में आ रहा है सलमान खान ने पहले भी वार्निंग दी थी कि बैक साइड से एक्ट्रेसेस की फोटोज नहीं लेना है, गलत एंगल से नहीं लेना है, कुछ भी सोशल मीडिया पे नहीं डाल देना है, लेकिन पेपराजी फोटोग्राफर्स जो है ना, वो इन चीजों को बहुत ज्यादा हल्के में ले रहे थे। तो इस बार बहुत सख्ती से पेश आने वाले हैं सलमान खान। अंत सलमान खान जो है वो थोड़ा सा, मतलब उन्हें ना अपनी तारीफें सुनना पसंद है। हाँ, समझा करो आप। राइट, रेडियो मसीन बड़ी पुस्तक मैं आज आपके साथ। डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट। बाय।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो। देखो दिवाली आने वाली है, लेकिन घर की याद तो आएगी, पर उसके साथ साथ मिठाइयों की भी तो याद आ रही है। ठीक है, टिल दिवाली आप डाइटिंग शाइटिंग कर लो ताकि उस दिन अच्छे से एंजॉय कर पाओ, लेकिन दिवाली की इस लेगेसी को कौन बरकरार रखता है कि सिंगापुर में आपको इंडिया की याद ना आए, ऑथेंटिक टेस्ट मिल जाए। सो डेफिनेटली ये ऑप्शन भी आपके सामने है। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आज इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ दिवाली 2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शाही महारानी नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट, इनके स्वीट कलेक्शन हमेशा से बहुत ज्यादा बेहतरीन रहे हैं, और इस बार तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है यार। मतलब ट्रॉपिकल सनशाइन कलेक्शन से लेकर ग्राम एंड गुड डिलाइट से लेकर मैंगो सरप्राइजेस से लेकर मिल्क केक से लेकर डेट एंड नट बर्फी इन्होंने स्पेशली आपके लिए निकाली है। सो आप सेलिब्रेशन के लिए, गिफ्टिंग के लिए, इवन आप प्री बुकिंग करना चाहते हैं अपने स्टाफ के लिए, घर वालों के लिए, तो आप ये सारी चीजें पिक कर सकते हैं। सेलिब्रेशन बॉक्स, रॉयल सेवरी ट्रीट्स, रॉयल फेस्टिव बॉक्स, ट्रेजर शुगर एंड स्पाइस बॉक्स, अलग अलग कैटेगरी में, मतलब $85 ऑनवर्ड्स, $78 ऑनवर्ड, $117 ऑनवर्ड्स, $158 ऑनवर्ड्स, हर तरह का कलेक्शन आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप अर्ली बर्ड प्राइस ग्रैब करना चाहते हैं तो आपको $72.98 and $108+ ऑनवर्ड्स भी ये कलेक्शन मिल जाएगा, जिसके लिए आपको लॉग ऑन करना है www.shahimaharani.com/royaldiwalisweets। तो आपको और ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ऑनलाइन ऑर्डर्स जो हैं वो शुरू हो ही चुके हैं, और अगर आपने जल्द से जल्द ये अपने ऑर्डर्स बुक नहीं किए तो हाथ से निकल जाएंगी चीजें। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ।

0: यार है,
1: तुम सुन नहीं रहे हो यार।
2: ट्रेन का भी लॉज का भी आगे जरा दिल तो दे दे जाना। ट्रेन का भी लॉज का भी आगे जरा दिल तो दे दे जाना।
3: कैंस में थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देना।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

ऐसा होता है, आपका एक काम अच्छा होता है तो 2, 3, 4, 5 ऐसे करके ना लगातार एक सीरीज ऑफ काम जो है ना वो डेफिनेटली होता जाता है। और वो जो आपका गोल्डन फेज चल रहा होता है ना, उसमें मतलब मन लगाकर मचक कर मेहनत कर भी लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यू नेवर नो कब ऐसा टाइम आ जाए कि आपको ना घर बैठ कर देखना पड़े, इंतजार करना पड़े कि कोई आपको पूछ क्यों नहीं रहा है। हा? रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नूपुर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ। और ऐसे वाले उतार चढ़ाव सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की लाइफ में नहीं, आपकी मेरी हर किसी के सेक्टर की लाइफ में आता है। तो जब आपका गोल्डन पीरियड आए ना, डू एंजॉय दैट। खैर अभी ना गोल्डन पीरियड जैसा चल रहा है किसका? अजय देवगन का। अभी हाल ही में दृश्यम मूवी का तीसरा पार्ट भी लोगों ने पसंद कर लिया। सो भाई इन्होंने अगला काम भी शुरू कर दिया है। हाँ जी, अजय देवगन की अगली मूवी चौहान, इसका शूट कारगिल में शुरू हो चुका है। हाँ जी, लद्दाख कारगिल में इन्होंने करीबन 23 साल के बाद वापसी कर ली है। बिकॉज पहले भी LOC मूवी के दौरान ये वहां शूट करने के लिए गए थे और इस बार चौहान मूवी का शूट करने के लिए पहुंच गए हैं। तो भाई बहुत ज्यादा फोकस्ड चल रहे हैं अजय देवगन, बिकॉज यू नेवर नो ये गोल्डन टाइम कितने दिन तक रहेगा। तो अभी हथौड़ा गर्म है, बिल्कुल डेफिनेटली। मैं आरजे मस्ती मॉर्निंग चोपड़ा आपके साथ है, बिल्कुल गर्मा गर्म ताजे गाने कर रहे हैं आपका इंतजार मेरी जान।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में रहो।
2: ऐसा होना चाहिए कि जो भी हमारा सिलेबस है कॉलेज का, स्कूल का या फिर कोई और प्रिपरेशन का, उसको ना एक मूवी नरेशन की तरह बिल्कुल मसाले वगैरह डालकर, अच्छी वाली वेजिटेबल्स ऐड करके ना हमें सर्व कर देना चाहिए ताकि हम उसे घोट कर पी ले एंड डेफिनेटली वो चीजें ना एग्जामिनेशन सेंटर में याद आ जाए। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, एंड वी नेवर नो ये जो पढ़ाई लिखाई है इसे एकदम एक्सट्रीम तरीके से इंटरेस्टिंग कब बनाया जाएगा। लेकिन हाँ, वो ऑस्पिशियस चैप्टर्स, वो इतिहास जो सबको ग्रेसफुली याद रहना चाहिए, स्पेशली रामायण के अराउंड जो है ना, इसमें जरूर थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाकर सेलिब्रिटीज एंड बॉलीवुड डायरेक्टर्स जो हैं वो रिस्क ले रहे थे और अभी भी ले रहे हैं, और आने वाले टाइम में काफी मोटा इन्वेस्टमेंट हमें दिवाली के टाइम पर रामायण मूवी में नजर आएगा। तब पता चलेगा कि रणबीर कपूर का सिक्का चला या नहीं चला। हाँ, साई पल्लवी, हाँ जी, लोगों ने उन्हें बॉलीवुड में एक्सेप्ट किया या नहीं किया, बहुत सारी चीजें हैं। सो डेफिनेटली अभी तक इस मूवी के बारे में सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव बातें निकल कर आ रही थी, लेकिन रिसेंटली जाने माने डायरेक्टर सुभाष घाई ने बोल दिया है कि ये जो मूवी नितेश तिवारी ने बनाई है, एट द एंड ऑफ इट इसका जो कॉन्टेंट है वही किंग है। मतलब इसमें जो AI है, टेक्नोलॉजी है, इसमें जो इमोशंस है, स्टोरी टेलिंग है, वो डेफिनेटली लोग देखने के लिए थिएटर्स में आएंगे, चाहे ट्रोलिंग जितनी हो जाए। लेट्स सी, मुझे भी डर लग रहा है बिकॉज 400 करोड़ रुपीज समथिंग इसके अराउंड बजट रखा गया है, तो डर तो लगता है यार, ये किसी और की जेब से नहीं जा रहा है, हमारी जेब से ही जा रहा है। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी।
1: क्यों, सोचते ही आया ना याद तो दिवाली वाला शाही स्वाद।
2: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। शाही महारानी रॉयल मिठाई एंड नमकीन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 6235-8840 और लॉग ऑन टू shahimaharani.com।
3: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा इट्स टाइम फॉर सिंगापुर। गुजराती सोसाइटी प्रेजेंट्स सिंगापुर ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Musti. Book now at sgs.org.sg/navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो। देखो जब भी कोई इंडिया से सिंगापुर आ रहा होता है ना, तो हम उनको क्या बोलते हैं कि थोड़ी सी शॉपिंग ये करते आना वो करते आना, पर सामने वाला इंसान ना उतना तवज्जो देता नहीं है, मतलब उतनी लेवल पर डिटेलिंग से देखता नहीं है, बस ले आता है। सो ये फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज सिंगापुर में इंडिया से चलकर 75 से ज्यादा लीडिंग डिजाइनर्स आने वाले हैं, मतलब एक ऐसी हाई लाइफ एग्जीबिशन जहां आपको सिंगापुर में रहते रहते फैशन, स्टाइल, डेकोर एंड लग्जरी मिलने वाली है। दिस 13th एंड 14th अक्टूबर 10 AM to 8 PM आप अपने आप को थोड़ा सा फ्री रखो और पहुंच जाओ हॉलीडे इन ऑर्चर्ड सिटी सेंटर, बिकॉज वहां पर आपको सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कलीग्स के लिए बहुत सारे गिफ्टिंग ऑप्शंस भी मिलेंगे और फेस्टिव ऑप्शंस भी मिलेंगे। इवन वो वाले जो दोस्त होते हैं ना जो कहते हैं कि आपका इंडियन अटायर बहुत ही अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा लगता है, तो उनको भी साथ में लेकर जाओ, उनको भी अपने रंग में रंग लो और सुनते रहो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं आरजे अनुप्रभा आपके साथ।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर,
2: नुपुर,
0: डेफिनेटली इंडिया में क्या चल रहा है? हाँ, इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहा है, वायरल बहुत सारी बातें निकल रही हैं, सीजन बदल रहा है, वहां सर्दियां आ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ बॉलीवुड में भी बहुत ज्यादा जगलिंग चल रही है। एक तरफ लोग क्लाइमेक्स मूवी दृश्यम जैसी देखना पसंद कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऑफकोर्स धर्म से जुड़ी हुई मूवीज जो है वो देखना पसंद कर रहे हैं। एंड आपको तो पता ही है, उसमें से एक निकल कर आई है हनुमान अंश, जिसमें नीम करोली बाबा की लाइफ को दर्शाया गया है एंड इसकी फैन फॉलोइंग एक एन नंबर ऑफ लोगों के बीच में अलग तरह से निकल कर आ रही है। एंड अभी तक इसका जो है हिंदी वर्जन जो है वो मार्केट में निकला हुआ था, लेकिन अब इसका तेलुगु वर्जन भी रिलीज कर दिया गया है और इसकी शुरुआत हैदराबाद से करी गई है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अक्रॉस द रीजनल सिनेमाज जो है ना, ये अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकती है। भाई, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं और देखने के लिए बहुत सारी मूवीज हैं, बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन 2026 में कौन सबसे ज्यादा चलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये जो ऑनलाइन गरबा की ड्रेसेस एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है, तो ये क्या सिर्फ अपने आसपास छोटे मोटे इवेंट्स में पहनोगे या फिर अपने दोस्तों के साथ बस घूमने जाओगे तब पहन लोगे? नहीं ना, आपको कोई बड़े इवेंट का इंतजार है, बड़ा कोई गरबा, आपको एक ग्रुप चाहिए जहां पे आप एक ऑथेंटिक गरबा एक्सप्लोर कर पाए, राइट? तो देखिए, हर बार की तरह सिंगापोर का ट्रूली ओरिजिनल नवरात्रि सेलिब्रेशन होने वाला है, जो कि आपके लिए लेकर आए हैं सिंगापोर गुजराती कम्युनिटी, राइट? 16, 17 and 18 अक्टूबर ये होगा लगुना बॉल रूम, थानी लगुना, 11 लगुना गोल्ड ग्रीन सिंगापोर में। सो फ्राइडे सैटरडे एंड संडे तीन दिन है, 16, 17, 18 तारीख, एंड टिकट्स जो है डेफिनेटली बहुत जल्द खत्म होती जा रही हैं। आपको क्विकली अपनी टिकट्स ग्रैब करनी है sgs.org.sg/navratri2026 पर, और वहां पे आपको मल्टीपल कॉन्टैक्ट नंबर्स भी मिल जाएंगे ताकि आप डिटेल्स जान पाए। सो डेफिनेटली नवरात्रि को लेकर हम इतने सुपर एक्साइटेड हैं, और नवरात्रि हमारा वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग रिचुअल है, सो व्हाई नॉट मैं आज ऊपर आपसे एक सवाल पूछ ले और बदले में आपको चांस दे दे सिंगापोर गुजराती कम्युनिटी का स्पेशल गरबा इंजॉय करने का। हाँ, सो मेरा सवाल बहुत ही सिंपल है कि नवरात्रि त्योहार साल में कितनी बार आता है? क्विकली मुझे मैसेज करके या फिर आप व्हाट्सएप करके भी बता सकते हो कि नवरात्रि एक साल में कितनी बार आती है। 9151 8963 हमारा नंबर, रेडियो मस्ती 24 ऑनलाइन पर सेलिब्रेशन ऑन है और आपके फेस्टिवल्स हम साथ में एंजॉय कर रहे हैं, सो डोंट गो एनीवेयर।

यू नो वॉट आई स्टिल रिमेम्बर, जब जब मैंने ना अपनी कोई ड्रेसेस हर तरह से कुछ भी स्टिचिंग करवाया है ना, मतलब कस्टमाइज करवाया है ना अपने लिए, तो मेरी मम्मा का ऑन कॉल एक ही सजेशन होता था कि सुनो नुपुर, अंदर ना दो दो तीन तीन इंचेस का गैप रखवाना, कब पता कि तुम मोटी हो जाओ और वो चीजें ढीली करवानी पड़ जाए। तो मुझे बुरा लगता था यार कि मेरी मॉम मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं रखती है कि मैं आने वाले वक्त में और ज्यादा पतली हो सकती हूँ, बल्कि इन्होंने एक्सपेक्ट करके रखा है कि मैं थोड़ी सी चबी हो जाऊं, तो फिर मतलब क्या होगा, कपड़ों का नुकसान हो जाएगा। आपकी घर वालों में भी ऐसे कोई लोग हैं क्या? आपको भी अपनी मम्मा से ऐसे वाले इंस्ट्रक्शंस मिले हैं क्या? हाय हाय, सेम पिंच मेरी जान। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं और चेनू पर आपके साथ, और बताना चाहूंगी यहाँ हम पिछले साल के कपड़ों में आ जाए हमारे लिए ये अचीवमेंट होता है, लेकिन रिसेंटली अनिल कपूर 39 ईयर्स ओल्ड क्लोदिंग में एकदम सही आए।

हाँ पता है अभी रिसेंटली ये मिस्टर इंडिया वाला जो लुक है ना, वो ब्राउन ब्लेजर, ब्राउन शर्ट और एक कैप वाला जो लुक है ना, ये लेकर ये एक रियलिटी शो में पहुंचे और मतलब इन्होंने बताया साफ साफ कि ये कपड़े जो है ना वो 39 इयर्स बैक खरीदे गए थे और वो भी चोर बाजार से। हाँ जी, और वो जो ओरिजिनल मिस्टर इंडिया की कॉस्ट्यूम है वो इन्हें आज भी सूट करती है। ओए होए होए होए, क्या बात है, 39 इयर्स ओल्ड क्लोथ। इनकी बॉडी देखकर, इनकी फिटनेस देखकर एक अलग बेंचमार्क सेट हो चुका है, डोंट यू थिंक सो? हाँ, खैर बेंचमार्क तो हमने भी बहुत सारे सेट किए हैं, लेकिन आपको एंटरटेन करने के रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी।
1: क्यों, सोचते ही आया ना याद तो दिवाली वाला शाही स्वाद।
2: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। शाही महारानी रॉयल मिठाई एंड नमकीन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 6235-8840 और लॉग ऑन टू shahimaharani.com।
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया अकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focus syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
4: Namaste, behnor bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

इमेजिन आप शॉपिंग करेंगे, खर्चा करेंगे और बदले में आपको कैशबैक मिलेंगे, प्राइजेस मिलेंगे और एक क्वालिटी टाइम भी मिलेगा। क्या बात है यार, तब तो सुबह से शाम शॉपिंग करना है तो अकेले क्यों करना है, हस्बैंड को ले जाओ, अपने पार्टनर को ले जाओ, अपने घर वालों को ले जाओ, बच्चों को ले जाओ, हैव योर टाइम यार। हाँ, बस इसी थॉट के साथ काम करते हैं कौन, जैक सलाम इंडिया द फैमिली एक्सपो आपको हमेशा इंप्रेस कर देते हैं। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे अनुप्रा आपको बताना चाहेगी, आप शायद भूल चुके हैं कुछ ही वक्त में दिवाली आ रही है, कुछ ही वक्त में मैरिजेस से जुड़े हुए वो सारे इन्विटेशन आने वाले हैं जहां पे आपको टिप टॉप बनकर जाना है। तो दिस 16th to 25th ऑफ अक्टूबर के बीच हॉल 9 फॉयर 3 सिंगापुर एक्सपो आपको हॉल पहुंचना है और वहां पर आप ये सब इंजॉय कर सकते हैं। 10 दिन दीपावली की बिगेस्ट डिस्काउंट सेल लग रही है एंड बदले में आप मोबाइल फोन, क्रूज की ट्रिप, इवन ट्रिप टू दुबई, लंदन, पेरिस, रोम या न्यूयॉर्क भी जीत सकते हैं। सो बहुत सारी आपको एग्जीबिशन में वैरायटी मिलेगी, दिल्ली की, मुंबई की, चेन्नई की, जयपुर, कोलकाता, हैदराबाद, कश्मीर, पंजाब और भी मल्टीपल सिटीज की। डेली बहुत सारे प्राइजेस हैं, रंगोली कॉम्पिटिशंस हैं एंड आपके बच्चों के लिए एक प्ले जोन है, बहुत कुछ है। तो एक्सप्लोर दैट, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे अनुप्रा आपके साथ, डोंट गो एनीवेयर।

इमेजिन कोई ऐसा बॉलीवुड में कमबैक कर रहा है जिसकी पॉपुलैरिटी हमने शायद एक दो मूवीज से जज कर ली थी. हाँ, और मूवीज का नेम था कि जाने तू या जाने ना या दिल्ली 6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. कुछ ऐसी मूवीज इन्होंने करी कि हमें ऐसा लगा कि बस ये और दिखाई देंगे, पर अचानक से ये गायब हो गए. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट इमरान खान. रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुबड़ा आपके साथ. और बहुत वक्त से कहा जा रहा था इमरान खान जो है वापसी कर रहे हैं, वापसी कर रहे हैं, वापसी कर रहे हैं, लेकिन कब, कहां, कैसे वापसी कर रहे हैं ये किसी ने नहीं बताया. डोंट यू थिंक सो? मुझे ये बताना चाहिए. चलो ठीक है, बात को ना खींचते हुए मैं आपको बता देती हूँ कि इन दिसंबर OTT प्लेटफॉर्म पर एक मूवी रिलीज हो सकती है एंड उसमें इमरान खान के साथ भूमि पेडनेकर मेन रोल में आपको नजर आएंगे. और डेफिनेटली उसमें क्या क्लाइमेक्स होगा, क्या फीलिंग होगी ये नहीं बताया, लेकिन हिंट मिली है कि रोमांटिक कॉमेडी मूवी हो सकती है. सो अगर आप भी ऐसे ही चुनिंदा लोगों के फैन हैं जो कभी कभी नजर आते हैं और फिर अचानक से गायब हो जाते हैं और जब उनका कमबैक होता है तो आपको लगता है कि देखना तो चाहिए, तो आपके लिए एंटरटेनमेंट इंतजार कर रहा है. चलो ऑन दिस नोट मी आरजे नुपुर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, बिकॉज आज का दिन हमारे ऑफिस का थोड़ा सा अलग है ना, बताया तो था आज बॉस रेणुका का बर्थडे है यार. हाँ, तो आप भी जरा उन्हें मैसेज कर देना, हम तो यहाँ माहौल बना ही रहे. आरजे नुपुर बस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ थी फिलहाल के लिए. बाय बाय, टेक केयर.

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: आएंगे
1: न करण अर्जुन आएंगे न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: Monday blues? Not on our watch. Wake up to world news, fresh updates, aur thoda Bollywood ka maza bhi. Make your Mondays matter with the morning show with Renuka, 7 a.m. onwards.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out. Josh Mehra.
5: Raaz ki baat batau. मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
6: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Musti 24/7. Email a brief intro to info@radiomusti.com.sg requesting for application form.
7: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: Your Masti Music Cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
4: Check it out.
5: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है?
6: तुमको लेकर
5: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
7: मुझे चांद पे ले चलो।
5: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
8: रात अकेले है।
9: जोश में रहो।
10: मेरे करण अर्जुन आएंगे
11: ना? करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats.

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: गोकुल की राधा चली
3: ओ चली ओ चली
2: गोकुल की राधा चली
3: ओ चली चली चली
2: गोकुल की

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7। जोश में रहो।
3: दे आर फ्रेश, दे आर
4: वक्त बर्बाद ना दिन बाद।
3: They are happening from rocking the charts to ruling the countdown. Ye hai Masti Top 20. Now pumping up your Thursday evenings 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart.

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से। Shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
1: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
2: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ड्यूटी पर।
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.
1: Check it out.
2: ठंडा कुछ नहीं, सब गर्म ही गर्म है, अंगार है।

0: stanę jak kokiak.
1: मेरे करण अर्जुन आएंगे
2: ना, करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे
3: कैफे कैफे. नाचने का मन है
4: मेरा भी. आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी. व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर. मस्ती वॉइस आपकी चॉइस.
5: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर. चेक इट आउट.
2: इस दीपावली शॉपिंग ही सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी. Zaxxon India, the Family Expo, is back with its grand 43rd edition, celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition standya, cultural entertainment and family fun. 16th to 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxon India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxonindia.com.

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट।

0: बनाना चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती बॉयज, आपकी चॉइस।
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out.
3: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी।
4: क्यों, सोचते ही आया ना याद वो दिवाली वाला शाही स्वाद।
5: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। शाही महारानी रॉयल मिठाई एंड नमकीन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 6235-8840 और लॉग ऑन टू shahimaharani.com।
6: न करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, फिर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats.

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो तुम। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखिए निगाह। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो, तो जिंदा हो तुम। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल।

हेलो हाय वेलकम नमस्ते रेडियो मस्ती 24/7 पर। जी हाँ, आप सभी का स्वागत है। ये है डियर मस्ती दिल से, अ वेरी वार्म वेलकम एक नए एपिसोड में। मैं हूँ यहाँ पे आपकी अंतरा आपके साथ। यू नो, आज शो शुरू करने से पहले मैं यही सोच रही थी कि मैं आप सभी से पूछूंगी कि हैव यू एवर नोटिस्ड कि हम दूसरों को समझने में कितनी एनर्जी लगा देते हैं बट खुद को समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। Someone behaves strangely, हम सोचते हैं यार इसने ऐसा क्यों किया। Someone says something hurtful, उसका मतलब क्या था। Someone doesn't respond the way we expected, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। और फिर शुरू होती है हमारे दिमाग की इन्वेस्टिगेशन। But here's something I have been thinking about. What if sometimes the most important question is not why someone behaved a certain way, but why it affected us the way it did? Think about it. एक ही सिचुएशन में टू पीपल कैन रिएक्ट कम्प्लीटली डिफरेंटली। किसी को क्रिटिसिज्म मोटिवेट करता है, किसी का कॉन्फिडेंस शेक कर देता है। किसी को बींग अलोन पीसफुल लगता है, किसी को लोनली। किसी के लिए चेंज एक्साइटिंग है, किसी के लिए फ्राइटनिंग। सेम सिचुएशन डिफरेंट इमोशंस, एंड दैट्स बिकॉज हम सब अपने एक्सपीरियंसेस एक्सपेक्टेशंस फियर्स एंड मेमोरीज को लेकर लाइफ में मूव ऑन कर रहे होते हैं। तो समटाइम्स बिफोर आस्किंग कि वो ऐसा क्यों है, मे बी ये मैं अपने आप को भी बोलती हूँ कि मैं अपने आप से सवाल करूँ मुझे इससे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। नॉट टू ब्लेम माई सेल्फ, नॉट टू डिसमिस माई फीलिंग्स, बट टू अंडरस्टैंड देम, बिकॉज ये आई थिंक नीड ऑफ द आवर हो गया है आज कल फॉर गुड मेंटल हेल्थ। वी ऑलवेज नीड टू keep asking these questions to ourselves. Well, यही है वो ओपन स्पेस एंड सेफ स्पेस आपके लिए जो खुल चुका है। नो नेम्स नो जजमेंट जस्ट रियल कॉन्वर्सेशंस। ये है डियर मस्ती दिल से, आपके लिए हम डियर मस्ती और हमारे लिए आप हमारे डियर लिसनर। मैं हूं अंतरा एंड यस, बढ़ते हैं आगे एक म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। आपसे होगी मुलाकात आज की पहली चिट्ठी के साथ, सो स्टे ट्यून्ड।

डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7। और सीधा यहाँ से चलते हैं आज के पहली चिट्ठी की ओर। एंड आई थिंक ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होने वाली है। ये कहते हैं, डियर मस्ती, मेरे हस्बैंड ड्रीम करते हैं कि हम दोनों अर्ली रिटायरमेंट लेकर पीसफुल लाइफ एंजॉय करें, बट आई जेन्युइनली लव वर्किंग एंड कैन नॉट इमेजिन गिविंग अप माई करियर एनी टाइम सून। ही सेज, इतना काम कब तक करोगी? And I wonder why retirement has to mean the same thing for both of us. क्या couples को life के next chapter के लिए same dreams रखना जरूरी है? कहा था ना, काफी interesting सवाल है ये। And my answer, the first thing came to my mind when I was reading ये चिट्ठी जब पढ़ रही थी, no, not necessarily. You know, मुझे लगता है कि हम couples के लिए एक पिक्चर सा बना लेते हैं, बाय डिफॉल्ट की टेम्पलेट जिसको हमको कहते हैं कि साथ में करियर बिल्ड करेंगे, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करेंगे और फिर साथ में रिटायर होकर ट्रैवल करेंगे, खूब ट्रैवल करेंगे। साउंड्स ब्यूटीफुल, राइट? बट व्हाट इफ वन पर्सन जेन्युइनली लव्स दैट पिक्चर एंड दूसरे को अभी अपनी वर्किंग लाइफ में काफी खुशी मिल रही है? देखिए, आपके हस्बैंड के लिए रिटायरमेंट परहैप्स मींस फ्रीडम्स, कोई डेडलाइंस नहीं, कोई प्रेशर नहीं, ही विल हैव मोर क्वालिटी टाइम विद यू। But for you, work may not just be about earning money. It could be aapki identity, aapka purpose, and something that makes you feel alive. And neither dream is wrong. But main yahan par ek question zarur puchna chahti hoon. Is your husband asking you to stop working, like hard stop type, or is he actually asking for more time with you? बिकॉज ये दोनों बहुत ही अलग अलग कॉन्वर्सेशन है। मे बी उनका ड्रीम रिटायरमेंट नहीं, टुगेदरनेस है। सो मे बी नेक्स्ट जब भी आप उनके साथ डिस्कस करें, मैं रिटायर नहीं करूंगी, मतलब एक वो होता है ना, बहुत ही डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो जाता है अक्सर इस तरह की चीजें जो है ना, लोग बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं इस चीज को लेकर। When you imagine our retired life, what is it that you are really looking forward to? Traveling together, spending more time? Ye sawal poochne se, see how much of that life you can create without giving up your career. Maybe longer holidays, fewer working hours eventually, ya fir simply more intentional time together, that was the need of the hour. And agar aapke husband retire karna chahte hain and the finances allow it, why can't he retire and you continue working? That is also a way out. See, marriage is a partnership. Koi compulsory joint retirement scheme to hai nahi. Of course, important financial decisions and future plans need to be discussed together, and they must be. But being together doesn't mean wanting exactly the same things at the same time. Sometimes a shared future is not about having identical dreams. It's about making room for both dreams in the same life. I hope this really, really helps. Yeh hai Dear Masti, Dil Se on Radio Masti 24/7.

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी।
5: क्यों, सोचते ही आया ना याद तो दिवाली वाला शाही स्वाद।
2: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। शाही महारानी रॉयल मिठाई एंड नमकीन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 6235 8840 और लॉग ऑन टू शाही महारानी.com।

0: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: ये जो आपके अंदर की झिझक है ना, नर्वसनेस है ना, ये कब खत्म होगी जरा आप मुझे बताइए। नहीं नहीं बताइए ना, हम 2026 में बैठ के आपसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हाँ, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नबर आपके साथ और शो चल रहा है डियर मस्ती दिल से। एंड समटाइम्स ये वाला जो गाना है ना कि दिल तो बच्चा है जी, ये बहुत सच लगने लगता है। हमारे अंदर का बचपना कभी नहीं मरता। मतलब आप अपने डैड से उनकी पुरानी बातें पूछने लगोगे ना, तो वो अपने कॉलेज डेज ऐसे बच्चों की तरह आपको एक्सप्लेन करेंगे ना कि आपको मजा आ जाएगा। सो अभी मेरे हाथों में जिनका लेटर आया है, उन्होंने मुझे लिखा हुआ है, डियर मस्ती दिल से, कॉलेज के डेज के जो मेरे फ्रेंड्स रहे हैं वो मुझे हॉलीडेज के लिए बुला रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आज के टाइम पे जो मेरी लाइफ है, जो सब कुछ चल रहा है, उन सबको छोड़ के मैं उनके साथ जाऊं और इतने साल के गैप के बाद कहीं ऑकवर्ड फील ना हो। अब मैं पहले जैसी दिखती भी नहीं हूँ, पहले जैसे मेरा थॉट प्रोसेस भी नहीं है, मैं उतनी एनर्जेटिक भी नहीं हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। सो जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आपको जब ये इन्विटेशन आया है ना, कॉल पे आया, मैसेज पे आया, जैसे भी आया, सबसे पहला थॉट आपके मन में क्या था? क्या आप बहुत ज्यादा इंजॉय करोगे? हाँ, पुराने दिनों को याद करोगे, मजा आएगा, ये थॉट आया? या फिर ये थॉट आया कि अरे यार, ये लोग तो मुझे वैसे ही इतने पसंद नहीं थे, क्यों मैं जाऊं इनके, कोई तुक नहीं बनता इनसे मिलने का, कोई वर्थफुल टाइम नहीं होगा, या ये थॉट आया? देखो, अगर पहला वाला थॉट आया कि आप सच में अंदर से बहुत एक्साइटेड हो और पीयर प्रेशर के चलते आप ये सारी चीजें छोड़ना चाह रहे हो, तो ये गलत बात है यार। हाँ, मतलब देखो, लाइफ में हैप्पीनेस सामने से चलकर आए ना, ये बहुत कम मोमेंट होते हैं। और अगर आपके मन में ये आ रहा है कि ये लोग उतने वर्थ इट नहीं है कि आप अपना टाइम इनके ऊपर स्पेंड करो, मतलब वो मजा नहीं आएगा आपको, है ना, आपके चेहरे पे वो खुशी वाला जो है ना ग्लो नहीं आएगा, तो मत जाओ सिंपली। और ये आपका डिसीजन होना चाहिए प्योरली, आपको तो मुझसे पूछने की जरूरत भी नहीं थी। एनीवेज, अच्छा

0: डियर मस्ती, दिल से. बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है.
1: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऑन रेडियो मस्ती 24/7, जहां चल रहा है डियर मस्ती दिल से. यहां पर एक के बाद एक जो है आपकी चिट्ठियां जरूर पढ़ी जा रही हैं. एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, इस घंटे की एटलीस्ट आखिरी चिट्ठी जो है बिल्कुल यहां पर पढ़ते हैं. ये कहते हैं, डियर मस्ती, मेरे हस्बैंड फैमिली के लिए सब कुछ करते हैं. पेरेंट्स, चिल्ड्रन, रिलेटिव्स, एवरीवन कम्स फर्स्ट. जब उनकी खुद की हेल्थ की बात आती है, रेस्ट या हैप्पीनेस की बात होती है, ही सेज दैट मेरे लिए क्या करना है. आई एडमायर हिज डेडिकेशन बट इट वरीज मी. क्या अपने लिए कुछ ना चाहना सेल्फलेसनेस है, या समटाइम्स हम खुद को ही नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं. एंड आई थिंक जिन्होंने भी हमको ये चिट्ठी लिखी है, आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग जो है रिलेट कर पा रहे होंगे. ये सवाल न जाने उन्होंने अपने आप से कितनी बार पूछा होगा. इस लेटर में मुझे सबसे ज्यादा वो एक लाइन टच कर गई कि मेरे लिए क्या करना है. बिकॉज कितने लोग हैं ना हमारे आसपास जो जेन्युइनली अपनी फैमिली के हैप्पीनेस में ही अपनी खुशी को ढूंढ लेते हैं, और उनका प्यार तो कुछ ऐसा होता है कि तुम लोग खुश हो बस मैं उसी में खुश हूँ. आई नो इट इज ब्यूटिफुल, वेरी वेरी ब्यूटिफुल. But here's something I feel very, very strongly about as well, and it is completely my opinion. Taking care of everyone should not mean forgetting that you are also someone who needs care. और interestingly, जो लोग हमेशा सबके लिए available होते हैं, उन्हें खुद के लिए कुछ करना almost unnecessary सा लगने लगता है कि अरे मुझे क्या चाहिए, मैं तो ठीक ही हूँ, तुम लोग enjoy करो. And sometimes they genuinely mean it. Not everyone needs holidays, expensive gifts या hobbies to feel fulfilled. तो उन्हें force भी मत कीजिए कि नहीं तुम्हें अपने लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा. Not like that. But I would gently ask your husband something different, कि अगर कल किसी को आपसे कुछ नहीं चाहिए हो तो आप अपना दिन कैसे स्पेंड करना चाहोगे. बिकॉज मे बी उन्होंने कभी उस क्वेश्चन के बारे में सोचा ही नहीं है. दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज. और हेल्थ की बात आए तो आई वुड बी अ लिटिल मोर फर्म दैट रेस्ट, स्लीप, मेडिकल चेकअप्स, दीज आर नॉट लग्जरीज और रिवॉर्ड्स फॉर फिनिशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारियां हैं. एक और बात, उनकी केयर करते करते आप खुद को उनकी मैनेजर नहीं बनाते. Yeah, instead create choti choti opportunities together. Walk pe chale gaye, favorite meal of the day jo hai wo le liya without obligations. Let him discover what he enjoys without pressure, because selflessness jo hai na is beautiful when it comes from choice, but when you no longer feel allowed to choose yourself, that's where the it becomes kind of a concern. और शायद उन्हें ये रिमाइंड कराने की जरूरत है, आप सिर्फ सबके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अपने लिए भी उतने ही इम्पोर्टेंट है. आई रियली होप दिस हेल्प्स. ये है डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: एक नए घंटे में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं अंतरा आपके साथ ऑन डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7। यहाँ पर चिट्ठियां, सिचुएशंस और हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज उसी पे। अगर आपको किसी भी वक्त ऐसा लगे कुछ सुनकर कि अरे इससे तो हम गुजर चुके हैं और ऐसा हुआ है, कुछ भी रिलेटेबल सा लगे, हमें जरूर लिख के भेजिए 9151896 3 पर। एंड यस, लेट्स टॉक अबाउट प्राइवेसी, बिकॉज ये चिट्ठी कुछ उसी के बारे में बात करती है। डियर मस्ती, मेरे पेरेंट्स नियर बाय रहते हैं एंड दे हैव माई हाउस की फॉर इमरजेंसीज। Recently, they have started occasionally using it instead of ringing the bell. I know they feel ki mera ghar bhi unka hai and that is true, but sometimes I want privacy. Unhe please bell baja diya karo, kaise kahun without making them feel like guests. Interesting. इस लेटर को पढ़कर मेरे माइंड में सबसे पहले ये ख्याल आया कि कभी कभी जो बात हम कहना चाहते हैं वो बहुत सिंपल सी होती है, बट हमें डर होता है कि सामने वाला उसका मतलब कुछ और ना समझ ले, एंड स्पेशली इफ इट्स दे आर योर पेरेंट्स, राइट? आई मीन टेक्निकली तो बात सिर्फ डोरबेल की है, बट इमोशनली इट्स मच मोर देन दैट, बिकॉज पेरेंट्स के लिए बच्चा चाहे 15 साल का हो या 50 साल का, हमारे बच्चे का ही घर है, हमारा ही तो घर है। इट इज लाइक दैट एंड दैट इज ट्रू एज वेल, एंड ऑनेस्टली देयर इज समथिंग वेरी लविंग अबाउट दैट फीलिंग। बट ऑन द अदर साइड, जब आप अपना घर, अपनी फैमिली, अपना रूटीन बिल्ड कर लेते हैं, यू ऑल्सो डिवेलप अ सेंस ऑफ पर्सनल स्पेस, एंड वॉन्टिंग दैट स्पेस डजंट ऑटोमेटिकली मीन दैट यू आर बिकमिंग डिस्टेंट फ्रॉम योर पेरेंट्स, राइट? यहाँ मुझे एक और इंटरेस्टिंग सी चीज लगती है कि पेरेंट्स के साथ हमारी रिलेशनशिप जो है वो ग्रो तो करती है, बट उसके रूल्स कभी कभी अपडेट नहीं होते हैं। बचपन में पेरेंट्स नॉक के बिना रूम में आ जाते थे, और अब अडल्ट लाइफ में भी परहैप्स वही फेमिलियर

जो है ना कंटिन्यू हो रही है. फॉर देम नथिंग हैज चेंज्ड बट फॉर यू समथिंग हैज. सबसे ट्रिकी पार्ट ये है कि आप उन्हें हर्ट नहीं करना चाहते हैं, विच इज ऑब्वियस, राइट? यू डोंट वांट देम टू थिंक कि अब हमारे घर से भी इनको, मतलब हम आए उससे भी प्रॉब्लम है, अब हम घंटी बजा के घर में आए. You simply want them to understand that being welcome and having unlimited access are not necessarily the same thing. But how do you explain that without making it sound like a rejection, right? क्या डायरेक्टली कह देना चाहिए या कैजुअली मेंशन करना बेटर होगा? और अगर पेरेंट्स इमोशनली हर्ट हो जाए तो फिर आई थिंक या इट गोज समवेयर एल्स ऑल टुगेदर. आई वांट टू गिव इट सम मोर थॉट, आई वांट टू कम बैक टू दिस लेटर बिकॉज जरूरी है. कभी कभी मैं चिट्ठियां पढ़ती हूँ और मुझे कुछ कुछ चिट्ठियों को पढ़ने के बाद लगता है कि आई जस्ट कैन नॉट गिव माई पॉइंट ऑफ व्यू right here right now. So give me that musical break wala time. Aap ye break se hoke aaiye and I will be back with what I think about this whole situation on Dear Masti Dil Se on Radio Masti 24/7. If you think what do you think about it, aap bhi hame likhkar bhej sakte hain ki aapko kya lagta hai ki inko aise situation mein aapke hisab se kya karna chahiye.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक टू रेडियो मस्ती 24/7। मैं अंतरा आपके साथ डियर मस्ती दिल से चल रहा है यहाँ पे। और ब्रेक से पहले हमने एक लेटर पढ़ा जहाँ पर लिसनर के पेरेंट्स काफी पास रहते हैं यहाँ पे और इमरजेंसीज के लिए उनके पास घर की चाबियां भी हैं इनकी। बट रिसेंटली द पेरेंट्स हैव स्टार्टेड यूजिंग दोस कीज टू एंटर द हाउस विदाउट रिंगिंग द बेल। नाउ हमारे लिसनर लव्स अपने पेरेंट्स को लाइक एनी अदर बच्चा। उनके आने से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है बट वो चाहते हैं कि अंदर आने से पहले बेल बजा दिया करे। बट हाउ डू यू से दैट विदाउट मेकिंग योर पेरेंट्स फील हर्ट और अनवेलकम। सो यू नो आई थिंक यहाँ पर सबसे पहले एक चीज समझना जरूरी है, प्राइवेसी और डिस्टेंस दो कम्प्लीटली अलग अलग चीजें हैं। आप किसी को अपनी लाइफ में बहुत क्लोज रख सकते हैं बट फिर भी अपने घर में थोड़ी प्राइवेसी चाह सकते हैं। एंड आई ऑल्सो फील पेरेंट्स को यहाँ पर जो है एक नेगेटिव लाइट में देखने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। उनके लिए शायद ये चाबी का मतलब है कि ये तो अपना ही घर है, विच इज देयर हाउस, राइट? फीलिंग एब्सोल्युटली वैलिड है। बट फॉर यू दैट की वॉज गिवन फॉर एमरजेंसीज, सेम की टू डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग्स। तो मैं होती तो किसी इंसिडेंट के इमीडिएटली बात इरिटेट होकर बात नहीं करती। Usually हमारा first reaction कुछ इसी तरह का होता है। But I would always want to wait एक normal relaxed moment पे। Casually शायद बोलती कि एक छोटी सी बात बोलूं, आप लोग जब चाहे आया करो, आई लव हैविंग यू हियर, बस प्लीज आने से पहले बेल बजा दिया करो, इमरजेंसी के लिए तो चाबियां है ही आपके पास, that's it। So basically आप उनको आने से मना नहीं कर रहे, you are simply clarifying how you would like them to enter, just in case if it goes the other way कि अच्छा अब हम guest हो गए हैं अब हमें। तो I think it is also a fact कि हमें defensive नहीं होना है, because somewhere down the line we know that they might say something like that कि नहीं नहीं guest थोड़ी ना हो, आप तो family हो, but family में भी एक दूसरे की privacy रिस्पेक्ट कर ही सकते हैं। एंड देन गिव देम अ लिटिल टाइम, क्योंकि ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि इवेंचुअली पेरेंट्स समझ जाते हैं। समटाइम्स इट इज ऑल अबाउट टाइम। आप उनको कह के उनको भी वो प्राइवेसी और स्पेस दीजिए टू अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व द फुल सिचुएशन, एंड आई एम श्योर दे'ल कम अराउंड। आई एम वेरी वेरी श्योर दे'ल कम अराउंड। इट्स जस्ट हाउ वी पुट इट इन फ्रंट ऑफ देम, it's all that matters. Words have power, they are very powerful, but also in the tone with which you put it in front of anybody makes a lot of difference. So try it, I hope this helps, and do let us know ki kya hua uske baad agar jab aapne isko is tarah se deal kiya. Yeh hai Dear Masti Dil Se, Radio Masti 24/7 par.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है डियर मस्ती दिल से, मैं अंतरा यहाँ पर आपके साथ, बट ऑल्सो दिस इज द टाइम व्हेन यू नो दैट अंतरा यहाँ पर अकेली नहीं आती, और व्हेनेवर आई से दैट मींस इट इज टाइम फॉर आवर संघर्ष साथी श्रीधर टू जॉइन द चैट। हाय श्रीधर, वेलकम टू डियर मस्ती।
2: वेलकम अंतरा, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर।
1: श्रीधर, मतलब because we were just discussing about this case which Sridhar is going to talk about, कि मैं ये पूछना चाहती थी सबसे कि कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास कहने को बहुत कुछ है but you ended up saying like नहीं रहने देता हूँ, it's okay. So well, Sridhar, I think I gave a little bit of teaser. Why don't you tell everybody about this case?
2: Yeah, this was a very interesting case, and हमेशा corporate logo जो whoever works in corporate in the world, corporate world can understand about this, where you enter a meeting and you know it's basically a useless meeting. None of the ideas they give are going to work, but you have better ideas, so you want to solve the issue or you want to give them that the hint of making it an eventful meeting, but you can't do anything because you just feel powerless. You feel like kya farak padta hai isme, you know. So this was a specific case about a meeting, about a person who was having meeting issues.
1: Wow. Okay. मतलब इतना exhausting होता होगा, मैं तो सिर्फ इतना ही सोच रही हूँ कि हर meeting में ideas के साथ अपने डर को लेकर just you know sitting over there कि मैं क्या बोलूँ, बात उतनी नहीं है मेरे हिसाब से कि मेरे बोलने के बाद मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। So इस डर को tackle करते हुए उसमें से हिम्मत कहाँ से लाए and all those things, I think let's take a musical break and then we'll just ask Sridhar कि क्या किस तरह की टेक्निक यूज की इस एक यूनिक केस जब इनके पास आया। सो वेल, डू नॉट गो एनीवेयर, आप सुन रहे हैं डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी,
4: क्यों सोचते ही आया ना याद वो दिवाली वाला शाही स्वाद।
1: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। शाही महारानी रॉयल मिठाई एंड नमकीन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 6235 8840 और लॉग ऑन टू शाही महारानी.com।

0: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक टू ऑल माई वंडरफुल लिसनर्स, वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से फ्रॉम रेडियो मस्ती 24/7 मस्ती मीडिया नेटवर्क, राइट? आई फॉरगॉट, कैन वी रीटेक दैट?
2: या या, लेट्स डू।
1: व्हाट टाइम हो गए?
2: 1, 2, 3, गो।
1: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से, दिस इज योर संघर्ष साथी श्री, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू।
2: तो भाई थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर एक केस के बारे में जो श्रीधर बात कर रहे थे, लेट मी गिव यू अ क्विक रीकैप ऑफ दैट, कि एक ऐसे जेंटलमैन जो ऑफिस मीटिंग्स में, मतलब उनको लगता है कि व्हाटएवर इज बीइंग डिस्कस्ड उतना कुछ इट इज नॉट मेकिंग सेंस, बट वो कुछ कह नहीं पाते हैं उस बारे में इन द मीटिंग। डर ये है कि पीपल माइट जज हिम, डिसमिस हिम, या उनकी बात का मजाक बनाते। तो श्रीधर बताइए, हमारे संघर्ष साथी श्रीधर ने आपने इस डर पे कैसे काम किया इनके साथ?
1: हाँ, पहले ना आई एक्चुअली स्पोक टू हिम हाउ लॉन्ग ही वाज वर्किंग इन द कंपनी। उसने बोला 6-7 साल हो गए कंपनी में, एंड आई वाज आस्किंग हिम इन जनरल तुम्हारा उसका रिलेशनशिप कैसा है कंपनी में, मतलब इज ही समबडी हु इज ऑलवेज रेबेलियस और इज ही समबडी। उसने बोला यार रेबेलियस इफ ही वाज आई वुड हैव बीन सो हैप्पी, बट मैं कुछ भी नहीं बोलता। एंड आई आस्क्ड उसके रिलेशनशिप विद अदर पीपल, ही सेड यार नथिंग मेजर, नो मेजर टर्निंग ऑफ पॉइंट्स काइंड ऑफ थिंग। तो एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी यूज किया था हमने, तो मैंने बोला अगली बार सजेशन मत देना, ठीक है? तो he was a little surprised. I said, अगली बार सजेशन मत देना या फिर डोंट गिव यू अ सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन के साथ पूछना कि दिस इज माय कंसर्न, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस सजेशन, मतलब जैसे ये मेरा कंसर्न है, सो यू थ्रो द प्रॉब्लम बैक, सो इन दिस वे यू डोंट डिसरेस्पेक्ट एनीवन एंड यू काइंड ऑफ गिव एन इंप्रेशन दैट यू हैव एक्चुअली लिसन टू ऑल देयर आइडियाज, but now you say yes idea is fine, all this is fine, but this is my concern, and then you put your point inside and then you package that with a solution. So he said okay, and he wanted to give it a try. He said it's relatively simple this way because then you're not judged, and agar concern ho to they will accept it, if there is no concern then he doesn't have to worry anyway. so what I last heard from him 2 weeks back is surprisingly people took his suggestion.
2: Well, इनका सोल्यूशन तो इस तरह से निकला। At any given point of time, I want to tell my हमारे listeners यहाँ पर, अगर आपको कभी कोई केस सुनकर ऐसा लगता है that you have been through, या फिर you have, you know, a better way to deal with it, please feel free. We are all just giving our perspective towards the situation. So 9151896 that's the number. Sanghash Prasathi Sridhar यहाँ है, हम यहाँ है. We are all ears to what you have to tell us. Well, इसी के साथ thank you so much, Sridhar. It was amazing having you as always. And yes, हम लोग अगले episode में Sridhar से वापस से मिलेंगे. लेकिन फिलहाल हमारी journey dear मस्ती की यहाँ पर continue रहेगी. Thank you, Sridhar.
1: Thank you, Antra. Thank you, listeners. Bye.

0: डियर मस्ती, दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7। मैं अंतरा यहाँ पर आपके साथ, और यहाँ पे जो है अगली चिट्ठी की तरफ बढ़ते हुए, ये चिट्ठी कहती है दैट डियर मस्ती, मेरी टीनेज डॉटर रिसेंटली सेड शी वांट्स टू यूज अ डिफरेंट नेम क्योंकि उसको लगता है इट सूट्स हर पर्सनैलिटी बेटर। वी चोज हर नेम विद सो मच ऑफ लव एंड ऑनेस्टली मुझे थोड़ा हर्ट हुआ। आई नो इट्स हर आइडेंटिटी बट दैट नेम हैज सो मेनी मेमोरीज फॉर अस। क्या पेरेंट्स को अपने बच्चों की आइडेंटिटी के डिसीशंस में इमोशनली अटैच्ड होने का राइट है? ओके, एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक सबसे पहले तो ये है कि डोंट फील गिल्टी अबाउट फीलिंग हर्ट, बिकॉज ये हो ही सकता है। बट ऑल्सो आई डोंट वॉन्ट यू टू ओवर थिंक अबाउट द सेम सिचुएशन, बिकॉज पेरेंट्स के लिए बच्चे का नाम सिर्फ एक नाम थोड़ी ना होता है, राइट? कितनी डिस्कशंस हुई होंगी, कितने नेम शॉर्टलिस्ट किए होंगे, किसी ने कहा होगा ये अच्छा है, किसी ने कहा होगा अगर नहीं है कुछ और सोचो, फिर फाइनली एक नाम जो बचपन से लेकर आज तक जो है आपके लिए, इट हैज सो मेनी मेमोरीज, राइट? सो नेचुरली इट मैटर्स टू यू। बट यहाँ पे एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है। फॉर यू हर नेम रिप्रेजेंट्स वेयर हर स्टोरी बिगन। फॉर हर मे बी शी इज ट्राइंग टू डिस्कवर हु She is becoming. Teenage years में बच्चे अपनी identity जो है वो explore कर रहे होते हैं, and their likes and dislikes and style and opinions, even how they want to be addressed. And wanting a different name doesn't necessarily mean that she's rejecting the name you have given her or love behind it. उसको नहीं चाहिए। तो I would have been curious, in fact I would ask her ki acha tell me what is it about the new name that feels more like you. I have realized teenagers jo hai na wo they are more especially nowadays this generation is more about their feelings, they are more aware of their feelings, they are more connected to their feelings. So if you ask something like that, I am sure that they will understand where you are also trying to come from, है ना? Because हमने इतने प्यार से नाम रखा, तुम्हें पसंद नहीं, ये जो है ना उसमें कॉन्वर्सेशन ओपन नहीं हो पा रही है। दूसरा जो है, जो मैंने कहा कि what is it about the new name that feels more like you, it opens a conversation in a manner कि आप जानना चाहते हो मोर अबाउट देम, सो मे बी यू विल डिस्कवर इट्स सिंपली अ निकनेम शी लाइक्स, और मे बी शी वांट्स टू एक्सपेरिमेंट, और मे बी दिस इज समथिंग मच मोर मीनिंगफुल टू हर। सो खुद अज्यूम ना करके आस्क, टॉक इट आउट, और हाँ आप अपनी फीलिंग्स भी उनके साथ शेयर करें एट द सेम टाइम। सो एंड रिमेंबर, आपको इमीडिएटली हर फीलिंग सॉर्ट आउट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन टेक टाइम टू एडजस्ट व्हाइल स्टिल रिस्पेक्टिंग व्हाट शी इज आस्किंग, बिकॉज पेरेंट्स ऑल्सो हैव एवरी राइट टू फील इमोशनली अटैच्ड टू द नेम दे चोज, बट चिल्ड्रन ऑल्सो डिजर्व अ वॉइस इन हाउ दे वॉन्ट टू बी नोन, और इसीलिए शायद पेरेंटिंग का एक डिफिकल्ट और ब्यूटिफुल पार्ट यही है। वी गिव आवर चिल्ड्रन देयर फर्स्ट आइडेंटिटी एंड देन स्लोली दे लर्न टू मेक स्पेस फॉर द आइडेंटिटी they discover for themselves. And I am coming from a point where I know one of my cousin brothers, he had the same thing, and he asked his parents, my relatives, to change his name. He did that eventually, but it took a very good long time for even my relatives to understand and process the whole situation. But yeah, it is about identity and it was his life, so eventually it had to be his final call. Hope this helps.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसे खिलाकर किसी से सच बुलवाया जा सके। नहीं, अभी तक चाइना ने भी ना ऐसी कोई दवाई नहीं बनाई है। डियर मस्ती दिल से शो, मेरे यानी आरजे नुपुर के साथ है। हाँ, एनीवेज अभी मेरे हाथों में जिनका लेटर आया है उन्होंने मुझे ये बोला है कि पता नहीं मेरे संग ऐसा क्या है, मैं जब भी किसी से मिलता हूँ तो उनको मैं रूड लगता हूँ, और जितने भी मेरे एम्प्लॉयज हैं मेरे आसपास काम कर रहे हैं वो भी मेरे चेहरे पर मुझे बोलकर चले जाते हैं कि तुम बहुत ही रूड हो। तो मुझे कुछ अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ। जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपकी बातों में ही एक पॉइंट बड़ा ही रूडली निकल कर आया है जो आपने सबसे आखिर में बोला है कि आपको लगता है कि आप परफेक्ट हैं। देखो, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। इवन मैं जो आपसे बातें कर रही है ना, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, कहीं से भी नहीं हूँ। मैं तो मेरी बॉस से रोज डांट खाती हूँ। एनीवेज देखो, कई बार ऐसा आपको हो जाता है, मतलब हम अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल करते हैं, इतने गलत डिसीजन लेते हैं कि उसके बाद हमें सही डिसीजन लेने की आर्ट पता चल जाती है। हम अपनी लाइफ में एक नए लेवल पे पहुंच जाते हैं, मतलब जहां हमारे पीछे कुछ भी नहीं था, हम एक लेगेसी क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ऐसे में एक एरोगेंस जो है ना, वो शैडो की तरह हमारा पीछा कर रहा होता है, और ये स्वाभाविक चीज है। आपने इतनी मेहनत ना करी होती, आपके अंदर वो ईगो नहीं आता, वो कहते हैं ना, वो चार्म जो है ना वो नहीं खोता। लेकिन आप सोचिए, आपने जब ये सफर शुरू किया था आप कितने डेलिकेट थे, आप तो दुनिया के जुल्म से इतने ज्यादा हार्श बन गए हैं। हाँ, सो थोड़ा सा पिघलिए, थोड़ा सा आप बटर या आइसक्रीम बनिए, क्या पता लोग आपके चेहरे पे बोल के जाए यार तुम रूड दिखते हो पर हो नहीं अंदर से। हाँ, तो देखो, ये इम्प्रेशन आपके हाथ में है कि आप किस तरह से किस हद तक बदलना चाहें। मे बी आपको अंदर से भी अच्छा फील हो यार। देख

0: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी।
1: क्यों, सोचते ही आया ना याद वो दिवाली वाला शाही स्वाद।
2: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। शाही महारानी रॉयल मिठाई एंड नमकीन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 6235-8840 और लॉग ऑन टू shahimaharani.com।
3: They are fresh. They are hot.
4: They are happening.
2: From rocking the charts to ruling the countdown, ye hai Masti Top 20. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, the latest and the brightest. The week's top chart

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7। मैं अंतरा यहाँ पर आपके साथ। बिल्कुल जाने से जस्ट पहले वी हैव कम टू द एंड ऑफ अनदर ब्यूटीफुल एपिसोड ऑफ डियर मस्ती दिल से। ऑफ कोर्स यू नो लेटर्स सुनते सुनते जो है ये सोच रही थी, व्हाई डू वी समटाइम्स फील दैट लविंग समवन मींस वी हैव टू अग्री विद देम ऑन एवरीथिंग, राइट? थिंक अबाउट इट। Aaj, there was this husband who wanted to retire early, but wife loves her career. Then parents feel comfortable walking into the child's home, but the child wants little privacy. Teenager apna naam change karna chahte hain, but for her parents, that name holds years of memories. And then hamare Sangharsh Sathi Sridhar jo hai, he was talking about this particular situation jahan par jo hai ye banda who has so many ideas, but just cannot say it in front of everyone because of the fear of judgment. I mean, yeah. Then सारे छोटे छोटे सिचुएशंस जहाँ कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछ लेता है, हम आंसर नहीं देना चाहते हैं बट नो बोलने में भी ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। डिफरेंट सिचुएशंस बट समवेयर द सेम कंसर्न कि अगर मैंने अपनी बात कही तो सामने वाले को बुरा तो नहीं लगेगा। एंड यू नो व्हाट, समटाइम्स इट माइट, बिकॉज पीपल हैव फीलिंग्स, वी हैव फीलिंग्स, एंड नॉट एवरी कॉन्वर्सेशन इज गोइंग टू बी परफेक्टली कंफर्टेबल। एंड हियर समथिंग आई हैव कम टू रियलाइज, यू कैन लव समवन डीपली एंड स्टिल वांट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम देम। You can respect your parents and still want privacy. You can appreciate kisi ka generosity and still say, this doesn't work for me. You can understand someone's dream without making it your own. Sabse important baat, har disagreement relationship mein problem ka sign nahi hota. Sometimes it's simply two people being two different people. And perhaps maturity jo hai is not about avoiding every uncomfortable conversation, it's about learning to have those conversations without turning them into arguments, accusations ya phir guilt. Well, chaliye is hafte shayad hum sabhi ke liye ye learning hai, you don't have to choose between being kind and being honest. You can be both. And on that note, it's time for me to say bye-bye. On behalf of Nupur and Sangharsh Sathi Sridhar, aapke dil mein bhi agar koi baat hai, koi confusion, koi situation jiske baare mein you want to talk about, feel free to write to us 915-8963 per. You know that, right? No names, no judgment, just conversations. Dil se. Main Anshra, wapas se agle Tuesday aapse hogi mulaqat on Dear Masti, Dil se. Tab tak ke liye, take care of yourself, take care of the people you love. और हाँ, खुद को भी उन लोगों की लिस्ट में जरूर रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: मैं कोई शेर न भूले से कहूंगा तुझ पर, फायदा क्या जो मुकम्मल तेरी तहसीन न हो। कैसे अल्फाज के सांचे में ढलेगा ये जमाल, सोचता हूँ कि तेरे हुस्न की तौहीन न हो। हर मुसव्विर ने तेरा नक्श बनाया, लेकिन कोई भी नक्श तेरा अक्स बदन बन न सका। लबो रुखसार में क्या क्या न हंसी रंग भरे, पर बनाए हुए फूलों से चमन बन न सका। शायरों ने तुझे तमसील में लाना चाहा, एक भी शेर न मौजू तेरी तस्वीर बना। तेरी जैसी कोई शय हो तो कोई बात बने, जुल्फ का जिक्र भी अल्फाज की जंजीर बना। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, स्वागतम, खैर मकदम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल कर रहा हूँ, दोनों बाहें फैला कर आपका स्वागत कर रहा हूँ। सिंगापुर, आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं हूँ समर, लेकर आ गया हूँ वो शो जिसका इंतजार आपको भी रहता है और मुझे भी, क्योंकि यहाँ होती है हमारे पसंदीदा बॉलीवुड के लेजेंड्स की बातें, जिन्हें आपके लिए सुनना जितना खूबसूरत एहसास होता है उतना ही मुझे कहना अच्छा लगता है, आपसे बातें करना अच्छा लगता है। तो आज की जो हमारी लेजेंड है उनके लिए जावेद अख्तर साहब की लिखी नुसरत फतेह अली साहब की गायी कवाली की एक लाइन मुझे याद आ रही है, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी हैं हमारी आज की लेजेंड रेखा, जिनको बयां करने लगे तो अल्फाज जरा नाकाफी से लगते हैं। क्या कहिएगा उनके हुस्न का, उनके अदाओं का, और उस पर वो मदहोश करती आवाज। है कोई जवाब आपके पास? नहीं ना, सब कुछ लाजवाब है। एक्ट्रेस रेखा के फैन हम भी हैं और आप भी, तो आज हम जानेंगे उनकी जिंदगी के कई जाने और अनजाने पहलुओं के बारे में। तो बात शुरू करें उससे पहले म्यूजिकल तड़का लगा लें। ये थोड़ा सा म्यूजिकल ब्रेक आ रहा है और उसके बाद रेखा जी की जिंदगी के बारे में हम बात करने वाले हैं अपने इस शो लेजेंड्स पर। इसलिए कहीं जाएगा मत, सिंगापुर सुनते रहेगा रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो नाउ ऑन द गो। आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक।
2: क्या कहा?

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
2: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
3: Some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
4: It's a Masti partner event.
5: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
6: कहा था ना, इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के पार आपसे मिलूंगा। मैं समर एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर लेजेंड्स। आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, सिंगापुर्स ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो। और आज हम जिस लेजेंड की बात कर रहे हैं उनका नाम है भानु रेखा। जानते हैं भानु रेखा को? जी, रेखा जी का असली नाम भानु रेखा ही तो है। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 को, यानी 10 अक्टूबर 1954 को मद्रास में हुआ था। उनके पिता साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता थे जेमिनी गणेशन, और माँ फेमस तेलुगु एक्ट्रेस थी पुष्पावली। जब रेखा पैदा हुई तब इनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी और इनके पिता ने उन्हें कभी खुशी खुशी स्वीकार नहीं किया। माँ और बहनों के साथ रेखा का बचपन कटने लगा, लेकिन अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था तभी परिवार को आर्थिक तंगी के साए ने घेर लिया। हर तरह की कोशिश की गई पर अंत में एक ही रास्ता निकला कि रेखा, जो इस वक्त महज 13 साल की थी, वो फिल्मों में काम करें। लेकिन ये बात रेखा को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि भानु रेखा फिल्मों में काम करना ही नहीं चाहती थी, बिल्कुल नहीं। हर उस उम्र के बच्चे की तरह वो भी खेलना चाहती थी, मजे करना चाहती थी, आजाद रहना चाहती थी। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि उन्हें वो करना पड़ा जो उस वक्त उनके परिवार के लिए जरूरी था। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि वो सिर्फ एक फिल्म में काम करेंगी, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि माँ आप मुझे ये कह रही हो। माँ ने भी बच्ची को समझाया कि तुम्हें काम करने में बहुत मजा आएगा, बहुत सारी जगह घूमने को मिलेगा, और घूमना तो रेखा को अच्छा लगता ही था, तो वो मान गई। फिर रेखा ने तमिल फिल्मों में छोटी भूमिकाओं से शुरुआत की, लेकिन ये सिलसिला सिर्फ एक फिल्म पर रुका नहीं, बल्कि ये तो बस शुरुआत थी। आगे तो सफलता की कई तस्वीरें इस रेखा से ही बनानी थी। तमिल फिल्मों के बाद छोटी सी रेखा कैसे पहुंच गई मुंबई और यहाँ किन परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा, ये सब बताऊंगा। लेकिन एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद ये इंटरेस्टिंग कहानी जारी रहेगी सिंगापुर के एकमात्र हिंदी रेडियो, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। आप भी कहीं जाइए मत, और अगर जाना बहुत ही जरूरी है तो जल्दी से लौट कर आइए, और जो लोग कहीं नहीं जा रहे हैं वो गाने साथ में गुनगुनाइए और मुस्कुराइए। आप हैं समर के साथ।
7: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है,

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxon of India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition stanya, cultural entertainment and family fun. 16th se 25th October tak, Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxon India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxonindia.com.
1: तैयार हो जाइए, जब ढोल बजेगा, डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा It's time for Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Musti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
2: आप सुन रहे हैं Legends फिर से समर के साथ.
3: Welcome back to your very own show, Legends. आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर समर के साथ और आज हम बात कर रहे हैं रेखा जी की. मैं बता रहा था आपको कि साउथ की फिल्मों में कुछ काम कर लेने के बाद रेखा जी की मां ने फैसला किया कि अब यहाँ नहीं बॉलीवुड में काम करेंगी रेखा, और इसके लिए उन्हें अपना घर छोड़कर मुंबई आना पड़ा. महज 14-15 साल की उम्र में ये सब कर पाना जरा मुश्किल था, वो भी तब जब उनकी माँ उनके साथ नहीं थी. माँ बीमार थी इसलिए उनके साथ उनकी आंटी को भेजा गया. उस वक्त न तो हिंदी उन्हें अच्छी तरह से आती थी और न ही वो एक टिपिकल खूबसूरत नॉर्थ इंडियन लड़की जैसी दिखती थी जिसे फिल्मों में बतौर हीरोइन लिया जाए. रंग भी ऐसा नहीं था जिसे सोसाइटी खुशी से एक्सेप्ट करती हो. कुल मिलाकर मोटी सी सांवली हिंदी न जानने वाली रेखा को हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए भेज दिया गया. रेखा बताती है कि आई यूज्ड टू हेट एवरी मोमेंट ऑफ माय लाइफ देन. मुझे आजादी चाहिए थी और यहाँ सुबह 9 से रात के 10-11 बजे तक काम करना होता था, पर घर की जिम्मेदारियों को देखते हुए काम चलता रहा. एक इंटरव्यू में रेखा ने बताया था कि उस वक्त इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग हिंदी या पंजाबी में बात किया करते थे और उन्हें पंजाबी बिल्कुल नहीं समझ में आती थी. वो आगे कहती हैं कि तब काफी सारे लोग पंजाबी में मुझे कुछ कहा करते थे और मैं हंस देती थी. अब जब मुझे इस भाषा की समझ है तो वो बातें याद करके मुझे बड़ा बुरा लगता है कि एक छोटी लड़की जिसे आपकी भाषा भी नहीं आती, लोग उसे क्या क्या कहते थे. वो अच्छी बातें बिल्कुल नहीं थी. सन 1969 में रेखा की विश्वजीत के साथ पहली हिंदी फिल्म आई अनजाना सफर. इस अनजाना सफर के बाद कैसे बढ़ा रेखा का फिल्म इंडस्ट्री में सफर जानेंगे, पर उससे पहले सुन लेते हैं ये खूबसूरत नगमे जो रेखा जी पर ही पिक्चराइज किए गए हैं. उनकी फिल्मों से लिए गाने सुनिए और सुनते रहिए रेडियो मसी 24/7 लाइव, जहां पर समर कर रहा है आज रेखा जी की बातें. वापस आता हूं इस ब्रेक के बाद.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर चल रहा है लेजेंड्स। मैं हूं समर आपके साथ और आज मैं बात कर रहा हूं रेखा जी की, जिन्हें एक पहेली माना जाता है, जिनकी जिंदगी को किसी रहस्य से जोड़कर देखा जाता है। मेरी इन बातों से शायद जो मैं बातें रेखा जी के बारे में बता रहा हूं उनसे कुछ लोगों के मन की पहेली सुलझ जाए, क्योंकि मुझे तो वो इतनी सरल लगती हैं जितने आप और हम हैं। तो रेखा जी की बॉलीवुड में जो पहली फिल्म हिट हुई, जिससे उन्हें थोड़ा बहुत नाम मिला, वो थी सावन भादो। इस फिल्म के हिट होते ही उनके घर के बाहर फिल्म मेकर्स की लाइन लग गई थी उन्हें साइन करने के लिए, ऑफकोर्स अपनी फिल्मों में लेने के लिए। रेखा जो फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी वो बहुत खुश थी, वो इसलिए क्योंकि उनकी बहनें और माँ खुश थी, और बिल्कुल एक बच्ची की तरह उन्हें इस बात को सोचकर भी मजा आ रहा था कि अब वो अपने दोस्तों पर रौब जमा सकेंगी कि वो इतनी फेमस हैं। इसके बाद तो रेखा का फिल्मी करियर चल निकला, एक के बाद एक कितनी ही फिल्में की उन्होंने, लेकिन एक्टिंग के प्रति उन्हें कोई लगाव नहीं हुआ। ये रवैया थोड़ा सा तब बदला जब उनकी घर फिल्म रिलीज हुई। पहली बार उन्हें अपना काम थोड़ा बहुत पसंद आया फिल्म घर में, जो कि उस जमाने की एक बोल्ड सब्जेक्ट पर बनी फिल्म थी। इसमें उनके साथ थे विनोद मेहरा। इस बात के काफी स्ट्रॉन्ग र्यूमर जुड़े कि उन्होंने विनोद मेहरा से शादी भी कर ली थी, लेकिन दोनों का साथ ज्यादा वक्त तक नहीं रह पाया। काफी सालों बाद रेखा ने एक इंटरव्यू में इस बात को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि विनोद उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, वेल विशर थे, बस और कुछ नहीं। अब ये तो वही कह रही है ना, तो उनकी बात माननी पड़ेगी। इसलिए नो र्यूमर्स, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, आप तो इन खूबसूरत आने वाले गानों पर ध्यान दीजिए। बहुत उम्दा गाने हैं, एक से बढ़कर एक गाने हैं, इन्हें एंजॉय कीजिए, गुनगुनाइए और सुनते रहिए रेडियो मस्ती 24/7 लाइव सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो नाउ ऑन द गो। उसके बाद हम जब लौटेंगे तो हम बात करेंगे रेखा जी की लव लाइफ की। स्टे ट्यून।

0: some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
1: It's a Masti Partner event.
2: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
3: आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता जब मेरी कहानी में तेरा नाम नहीं होता। वेलकम बैक, मैं समर हूँ और मैंने कहा था कि मैं लौटूंगा रेखा जी की लव लाइफ आपको बताने के लिए। आगे रेखा जी से जुड़ा जो जिक्र मैं करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये शेर, जिसके बारे में बात किए बिना रेखा का जिंदगी नामा पूरा नहीं माना जाएगा। दरअसल ये बात है उस शख्स के बारे में जिन्होंने उनकी जिंदगी में बहुत खास जगह बनाई। उनका नाम है अमिताभ बच्चन। रेखा जी की अमिताभ बच्चन से पहली मुलाकात फिल्म दो अनजाने के सेट पर हुई थी और यही उनकी साथ में पहली फिल्म भी थी। तब अमिताभ शादीशुदा थे। शुरुआत में दोनों का रिश्ता काफी गुपचुप में चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे सबको खबर होने ही लगी। लेकिन दोनों में से किसी ने भी इस रिश्ते को दुनिया के सामने खुलकर स्वीकार नहीं किया। कुछ मौकों पर रेखा ने जरूर साफ शब्दों में न सही पर दबी जुबान में एक्सेप्ट किया कि उनका और अमित जी का कोई रिश्ता है जो बहुत खास है। और जब इन दोनों के अफेयर की खबरें पूरे परवान पर थीं, तब ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में रेखा माथे पर सिंदूर लगाकर आई और इस बात ने शादी से हटाकर मीडिया का ध्यान रेखा की ओर खींचा। कहा जाता है कि एक बार जया बच्चन जी ने अमित जी की एब्सेंस में रेखा को डिनर पर इनवाइट किया अपने घर और तब उनसे नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वो उनके पति से दूर रहे। इसके कुछ वक्त बाद यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म सिलसिला का ऐलान किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक रियल लाइफ लव स्टोरी पर बेस्ड थी। बड़ी बात थी कि फिल्मों से दूरी बना चुकी जया बच्चन ने इस फिल्म में वो रोल करना स्वीकार किया जिससे वो अब असल जिंदगी से भी गुजर रही थी, यानी अमिताभ बच्चन की पत्नी का किरदार। फिल्म हालांकि हिट तो नहीं रही, लेकिन रेखा अमित जी की कहानी के करीब होने के कारण चर्चा में खूब रही। इस फिल्म के बाद दोनों ने एक दूसरे से भी दूरी बना ली। आज भी खुलकर न सही पर लफ्जों के इशारे से कई बार रेखा जी कही जाती हैं कि वो मेरी जिंदगी में बहुत खास थे और बहुत सी चीजें उन्होंने मुझे सिखाई। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार वो कौन था जिससे शादी करने के लिए रेखा ने हाँ की थी। लेकिन उससे पहले ये म्यूजिकल ब्रेक आपका इंतजार कर रहा है, आइए इसे एंजॉय करते हैं। सुनते रहिए रेडियो 24/7 लाइव सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो।

0: The strongest people are those who win battles we know nothing about. Radio Masti 24/7 support World Mental Health Day.
1: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ.
2: वेलकम बैक. शो बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुका है. मैं हूं समर. आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर रेखा की कहानी मेरी जुबानी. अमिताभ बच्चन से अलगाव होने के बाद रेखा की जिंदगी में अकेला बना गया था. वो किसी का अपने करीब न होना मिस करती थी. शादी करके घर बसाना चाहती थी, बस यही ख्वाहिश थी उनकी. कुछ सालों बाद उन्होंने फिल्मों से ब्रेक भी ले लिया क्योंकि उनका मन भी फिल्मों से उचट रहा था. लगभग 3 सालों के ब्रेक के बाद रेखा को फिल्म ऑफर हुई खून भरी मांग. वापस लौटी रेखा ने देखा कि अब इंडस्ट्री में कई नई हीरोइंस आ चुकी हैं. रेखा की फिल्म खून भरी मांग को बहुत एप्रिसिएशन मिला और साथ ही अवार्ड्स भी. इस फिल्म के लिए अवार्ड मिलना वो कई मायनों में खुद के लिए अहम मानती हैं क्योंकि तब उन्होंने महसूस किया कि एक्टिंग भी एक जिम्मेदारी की तरह है. इसके कुछ वक्त बाद एक कॉमन फ्रेंड के जरिए रेखा का परिचय होता है निकिता शाह और हॉटलाइन ग्रुप के मालिक मुकेश अग्रवाल से. ये सिलसिला फोन पर बातचीत से शुरू हुआ था और कई दफा फोन पर बात होने और बमुश्किल चंद मुलाकातों के बाद मुकेश ने रेखा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और रेखा ने भी हाँ कह दिया था. दोस्त मुकेश की काफी तारीफ किया करते थे. He was a rich and successful businessman और पिछले दिनों हुई फोन पर बातों में सब कुछ ठीक ही लग रहा था. रेखा मुकेश के घर वालों से मिली जिन्होंने भी दोनों के इस बड़े फैसले पर खुशी जाहिर की. इसके बाद एक रात दोनों शादी के लिए तैयार होकर निकल पड़े. वो एक मंदिर पहुंचे जहां पर काफी भीड़ थी इसलिए वो वहां नहीं गए. आगे एक और मंदिर था जो बंद हो चुका था क्योंकि रात का समय था. तो उसी बड़े मंदिर के सामने एक छोटा मंदिर था जहां कोई नहीं था. बंद तो वो भी हो चुका था लेकिन पुजारी उसी परिसर में ही सोया करते थे. तो उन्हें उठाकर मुकेश जी ने कहा कि आपको हमारी शादी करवानी है. अभी इतनी रात को रेखा की शादी करवानी है? पुजारी इसके लिए राजी हुए या नहीं और क्या है आगे की कहानी बताऊंगा इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद. इंतजार कर रहा हूँ मैं. रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर. दिस इज सिंगापुर्स ओनली हिंदी रेडियो. नाउ ऑन द गो.

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore, 2 days, endless style, one destination.
3: It's a musty partner event.
4: आप सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
5: हेलो एंड वेलकम बैक। लेजेंड शो चल रहा है, मैं हूं समर आपके साथ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। ये सिंगापुर का एकमात्र हिंदी रेडियो है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि रात में मुकेश और रेखा पहुंचते हैं एक मंदिर, पुजारी को उठाते हैं कि हमारी शादी करा दो। अब क्योंकि ऐसे लोग रोज रोज तो उनके मंदिर में आते नहीं थे, इसलिए वो मान गए और रात लगभग 10:30 बजे दोनों ने शादी की। और रेखा खुशी खुशी एक लेजिटिमेट सरनेम पाकर रेखा अग्रवाल बनकर घर लौट आई। हालांकि रात के समय भगवान के शयन के बाद पुजारी के द्वारा करवाई गई शादी की वजह से उन्हें उस मंदिर की पूजा विधि से बेदखल भी कर दिया गया था, पर शादी तो हो गई थी और ये खबर अब सबको पता भी होने लगी थी। अचानक मिली इस खबर से लोग और उनके दोस्त सब अचंभे में थे। कुछ दिनों तक सब ठीक चला, पर जल्द ही रेखा ने महसूस किया कि उनके पति मुकेश ढेर सारी दवाइयां खाते हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। पहले पहल तो उन्होंने इन सब बातों को नकार कर सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, लेकिन एक हद के बाद उन्होंने हार मान ली और उन्होंने इस रिश्ते को स्पेस देने की सोची। उसी के बाद एक बार जब रेखा देश से बाहर गई हुई थी, मुकेश ने उन्हीं के एक दुपट्टे से खुद को फांसी लगा ली। इस खबर को सुनकर सभी को झटका लगा और मीडिया से लेकर आम लोगों तक ने इस सब के लिए रेखा पर ही इल्जाम लगाए। लेकिन रेखा खुद इस बारे में क्या कहती हैं, ये जानकर शायद आप हैरान हो जाएंगे। ये हैरानी वाली बात मैं आपको बताऊंगा इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, कहानी सस्पेंस की, कहानी रेखा की, मेरे यानी समर के साथ। दिस इज सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो, नॉन द गो। आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक, स्टे ट्यून्ड।

गतित था लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गतित रंग था खेलत भुज मेलत लपट जपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग भोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: ब्यूटीफुल गॉर्जियस एक्ट्रेस रेखा की बात चल रही है आज हमारे शो लेजेंड्स पर। मैं हूँ समर, आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव सिंगापुर जोन हिंदी रेडियो नाउ ऑन द गो। रेखा जी से जब भी मुकेश अग्रवाल के साथ उनकी शादी के बारे में और इस घटना के बारे में पूछा जाता है तो वो मुस्कुरा कर कहती है कि हो सकता है मेरे ये बोलने पर लोग मुझे बुरा समझें, पर मैं थैंकफुल हूँ उस वक्त की, क्योंकि तभी मुझे पता चला कि दुनिया और लोग वाकई में क्या होते हैं। तभी मैंने जाना कि अपने कौन है और कौन आपको धोखा दे रहे हैं। आज मैं जैसी हूँ, जहाँ हूँ, उसमें इस सब का भी हिस्सा है, क्योंकि तब मुझ में जो समझ आई वो मेरे अब तक की जिंदगी में बहुत काम आई है। सोचिए कितनी पॉजिटिव है वो, और लोगों ने उन पर जाने कैसे कैसे इल्जाम लगाए, बस इसलिए क्योंकि उन्हें जिस प्यार की तलाश थी वो तलाश कभी मुकम्मल न हो पाई। उन सभी लोगों से जिन्होंने उन्हें गलत समझा और उन लोगों से जिनसे उन्होंने उम्मीद की जो पूरी न हो पाई, उन्हीं के लिए रेखा जी कहती हैं।
2: मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों।

0: तैयार हो जाइए जब ढोल बजेगा, डांडिया खनकेगा और पूरा सिंगापुर बोलेगा It's time for Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. 16th, 17th and 18th October at the new grand and stunning Laguna Ballroom, Dusit Thani Laguna. Three spectacular nights of Garba Dandiya tradition and celebration. Complimentary shuttle available too. Tickets $25 onwards almost sold out, but you can still win yours with Masti. Book now at sgs.org.sg/Navratri2026. Singapore Gujarati Society presents Singapore's truly original Navratri. Tradition, togetherness, celebration.
1: Some invitations are simply too stylish to miss. This October, High Life Exhibition returns to Singapore, bringing you a curated world of Indian fashion and lifestyle. Discover festive wear, bridal couture, jewelry, accessories and home decor from designers across India and Singapore. 13th and 14th October, 10 a.m. to 8 p.m. at Holiday Inn Singapore, Orchard City Centre. High Life Singapore. 2 days. Endless style. One destination.
2: It's a Masti partner event.
3: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
4: हेलो एंड वेलकम बैक। दीवा रेखा जी सबको पसंद है और आज उन्हीं की बात लेकर मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। मैं हूँ समर, आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव सिंगापुर्स ओनली हिंदी रेडियो, जहाँ पर लेजेंड्स के जरिए मैं आज रेखा जी की कहानी सुना रहा हूँ आपको। रेखा जी की एक्टिंग, उनका डांस, उनकी अदाएं सब सीखना चाहेंगे, मगर अगर सबसे बड़ी बात उनसे कुछ सीखने की है तो वो है उनकी पॉजिटिविटी। जी हाँ, बचपन से जिंदगी में जितना संघर्ष उन्होंने किया, करियर में शुरुआती उतार चढ़ाव, प्यार की उनकी तलाश, नाकामयाब शादी, इन सब के बाद तो कोई भी टूट सकता है, लेकिन रेखा अपनी लाइफ की हर नेगेटिव बात के लिए शुक्रिया अदा करती हैं, शुक्रगुजार हैं। कहती हैं कि इन सब ने मुझे वो बनाया जिस पर मुझे गर्व है। कितने लोग हैं जो इस तरह से सोच पाते हैं। साथ ही अपनी अदायगी का श्रेय भी वो खुद को नहीं देती। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि उमराव जान जैसी फिल्म जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला, कैसे किया आपने ये सब और कैसा लगता है ये इतनी बड़ी उपलब्धि आपको मिली उस पर, इस पर वो कहती हैं कि मेरी एक्टिंग की शुरुआत पैशन से नहीं, जरूरत से हुई थी, इसलिए मैंने एक्टिंग को काफी दिनों तक सीरियसली लिया ही नहीं। उमराव जान जब मुझे ऑफर हुई तो मुझे उर्दू का लफ्ज तक नहीं आता था। ये तो मुजफ्फर अली की काबिलियत थी कि फिल्म इस मुकाम तक पहुंची। और जहां तक मेरी एक्टिंग की बात है तो मेरी जिंदगी उस वक्त जिन मरहलों से गुजर रही थी उन्हीं का असर था और शायद वही मेरी एक्टिंग में भी नजर आया। उमराव जान में मैं कहीं अपने आप को महसूस कर पा रही थी। हाउ डाउन टू अर्थ और उनकी इसी खासियत के नाम ये अगले गाने। फिर लौट कर आऊंगा, मैं यहीं आपका इंतजार कर रहा हूं। मैं हूं समर, आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो, स्टे ट्यून्ड।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: समर इधर, ध्यान किधर। रेडियो मस्जिद 24/7 लाइव आप सुन रहे हैं और मैं यहाँ पर लेजेंड्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज हम बात कर रहे हैं रेखा जी की। रेखा जी बॉलीवुड की एजलेस डीवा। जी हाँ, अक्सर पार्टीज और अवार्ड फंक्शंस में बनारसी साड़ी और लंबे खुले बालों में जब रेखा जी आती हैं, तो आज की हीरोइंस भी एक बार को तो फीकी सी बढ़ जाती हैं उनके रंगत के आगे। अपने एवर यंग लुक का क्रेडिट वो रेगुलर योग और हेल्थी फूड को देती हैं। वो आज भी फिल्मों में एक्टिव हैं और कोई मिल गया और क्रिश जैसी फिल्मों में वो ऋतिक की माँ और दादी का रोल बखूबी प्ले कर चुकी हैं। उनकी एक फिल्म सुपर नानी भी काफी चर्चाओं में रही थी। फिल्म फेयर, आईफा, स्टारडस्ट, जी सिने जैसे कई अवार्ड्स के अलावा एक नेशनल अवार्ड और पद्मश्री भी मिल चुका है। अखबारों और मैगजीन्स की सुर्खियों में रहने वाली रेखा के बारे में एक अनोखी बात यह है कि उन्होंने कभी कोई किताब और कोई अखबार या मैगजीन अपनी जिंदगी में पढ़ी ही नहीं, और इन सब के बावजूद उनके पास एक बड़ी सी लाइब्रेरी है जिसमें किताबों का बड़ा कलेक्शन है। क्या दिमाग में सवाल उठ रहे हैं? दरअसल उनकी लाइब्रेरी के कलेक्शन में लिखावट वाली किताबें नहीं है, बल्कि सिर्फ तस्वीरों वाली किताबें, जिन्हें देखना उन्हें बड़ा पसंद है। रेखा, नाम भले ही दो अक्षरों में सीमित हो, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी जिंदगी के हर रंग से भरी है। वो खूबसूरत की मंजू सी चुलबुली हैं, तो सिलसिला की चांदनी सी प्यार के हाथों मजबूर भी। उनमें उमराव जान की संजीदगी भी है, तो बीवी हो तो ऐसी की शालू जैसी समझदारी भी, और ये हर रंग उनके फैंस को पसंद है। We all wish her 100 more young and ageless years. रेखा जी आप स्वस्थ रहें और यूं ही हम सबको एंटरटेन करती रहें, अपनी एक्टिंग के जलवे बिखेरती रहें। आपको सलाम। समर के सलाम के बाद हम आपको सलाम करने के लिए समर एक बार फिर से लौट आया है, मतलब जाने के लिए इजाजत लेने आया हूँ। दे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगा एक और लेजेंड की कहानी लेकर। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड पीपल अराउंड यू। बाय बाय, नमस्कार।
2: कायदा कायदा कायदा, हर चीज में कायदा, आखिर इसका फायदा। कायदा तोड़ के सोचो, एक दिन चांद निकलता नीचे से और मैदान पे रखा होता।

0: अच्छा सोचो, सूरज का रंग नीला होता
1: होता
0: और पेड़ों का रंग लाल
1: लाल,
0: पंछी रहते पानी में
1: वाह,
0: और मच्छी गगन विशाल
1: वाह वाह वाह।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
1: Raat akeli hai, raat akeli hai to kya? Hum to aapke

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
2: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर। चेक इट आउट।
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आप

0: पूरे सौ, रात के बज गए पौने दो, जो होता है होने दो।
1: रात अकेली है
2: तो क्या हम तो

0: वो तो
1: क्यूट है ना।
0: अरे पहलवान है,
1: पर तुमसे प्यार करती है।
0: हो नहीं सकता।
1: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
0: हो नहीं सकता।
1: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
0: ये हो नहीं सकता।
2: हुनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।

वाले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे।

जाने तमन्ना, अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी

बोला देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है, वरना बीवी फिर मारेगी।

है नफरत हारी और पर जीती लुड़ी खुशी पे लौट के आई आई रे आई रे आई रे आई रे आई पीना छूट गया पीना छूट गया बीवी ने इतना दिया प्यार पीना छूट गया फिर दोनों ऐसे मिले फिर दोनों ऐसे मिले प्यार में ही डूब गए प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार जहां चारिया

0: सिमरन तू आ गई, मैंने तो लग गया तू आना ही नहीं। नाउ चड्डे फट्टे एंड बर्न द डांस फ्लोर।
1: डोंट वरी, आज डांस भी होगा और चांस भी।

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति में सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो। इमेजिन आपके अंदर की एक कमी ना आपकी सुपर पावर है। आप इस बात को ध्यान से नहीं देख रहे मेरी जान। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आज इन पर मस्ती मॉर्निंग शो पर वंस अगेन सुबह सुबह मुलाकात करने के लिए आ चुकी है और आपसे बोलना चाहूंगी, आजकल के वर्क पर्सनल लाइफ के प्रेशर के चलते हम ना धीरे धीरे से भुलक्कड़ बनते जा रहे हैं। चीजें हमें कल की याद नहीं है और आप पिछले साल की पूछ रहे हैं। बाय द वे, ये हमारी सुपर पावर है, आप इसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। देखो लाइफ में कितना कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रहा है, ऑलरेडी हमारे दिमाग का जो स्टोरेज है ना वो ओवरलोडेड है, और ऐसे में अगर हमें भूलने की बीमारी लग जाए, आई हाय चेरी ऑन द टॉप, मतलब आप कुछ चीजों को अनदेखा कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ एनीवेज, ऐसी अनदेखी बातें जो बॉलीवुड में हो रही हैं और आपकी नजरों से थोड़ी सी अनदेखी हो गई है, जरूर मैं आरजे नफर आपको चुन चुन कर देख देख कर बताने वाली है। सो डोंट गो एनीवेयर, बातों का सिलसिला, गानों का सिलसिला और मुलाकात का सिलसिला शुरू हो चुका है मेरी जान। आरजे नफर द साइड।

0: इस दीपावली शॉपिंग भी, सेलिब्रेशन भी और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका भी। Zaxxon India, the Family Expo is back with its grand 43rd edition, celebrating 20 amazing years. Enjoy 10 days of Deepavali discounts, Indian shopping, delicious food, competition stanya, cultural entertainment and family fun. 16th se 25th October at Hall 9, Foyer 3, Singapore Expo mein. Entry is free, free, free. So bring your family and celebrate the spirit of India at 43rd edition of Zaxxon India, the Family Expo. The biggest Deepavali discount sale of the year. For more info, log on to www.zaxxonindia.com.
1: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
2: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत, ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़।
0: This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में
2: देखो आजकल लोगों की जुबान तो मीठी रही नहीं है सो व्हाई नॉट इन्हें थोड़ा सा मीठा किया जाए। दिवाली आने वाली है और ऐसे में तैयारियां की जाएं और सबका मुंह मीठा करने की तैयारी की जाए। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। भाई एक जो लेगेसी चलती आ रही है कि सेलिब्रेशन है तो मीठा तो बनता है, तो इस सेलिब्रेशन को आप कंटिन्यू कर सकते हैं शाही महारानी के रॉयल मिठाई कलेक्शन के साथ। एग्जैक्टली शाही महारानी हमेशा से आपके लिए फेस्टिव स्पेशल वैरायटीज लेकर आई हैं, जैसे इस बार ट्रॉपिकल सनराइज न्यू ग्राम एंड गुड डिलाइट मैंगो सरप्राइज मिल्क केक डेट एंड नट बर्फी और भी बहुत सारी कैटेगरीज आपको मिलेंगी। सेलिब्रेशन बॉक्स की बात करूं तो आपको मिलेगा $78+ ऑनवर्ड्स। रॉयल सेवरी ट्रीट्स की बात करूं तो वो आपको मिलेगा $108+ का। रॉयल फेस्टिव की बात करूं बॉक्स की तो $118+ का मिलेगा। सो डेफिनेटली आप डिटेल से प्राइसिंग भी चेक कर सकते हैं, डिटेल से ड्राई फ्रूट बॉक्स से लेकर जो मिठाइयां हैं उसका कलेक्शन चेक कर सकते हैं। उसके लिए लॉग ऑन कीजिए www.shahimaharani.com या आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 6235-8840 पर। डेफिनेटली रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ कुछ और भी बातें कर रही हैं आपका इंतजार।
3: We are Radio Masti 24/7 Live, keeping you connected Bollywood style, anywhere, anytime.

0: They are fresh. They are hot. They are happening. From rocking the charts to ruling the countdown. Yes, musty top 20. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart busters.
1: गरम कड़ाही, भुनता हुआ बेसन, वो हल्की आंच पर घुलती हुई चाशनी।
2: क्यों? सोचते ही आया ना याद, वो दिवाली वाला शाही स्वाद।
0: इस दिवाली मुंह मीठा करे शाही महारानी के रॉयल फेस्टिव मिठाई कलेक्शन के साथ। रिलिश करे कुछ हटके एंड नए फ्लेवर्स लाइक द ट्रॉपिकल सनराइज, ग्राम एंड गुड डिलाइट टू द शाही क्लासिक्स लाइक मिल्क केक एंड मोर। नमकीन चार्ज टू शाही महारानी सेलिब्रेशन एंड ट्रेजर सीरीज गिफ्ट बॉक्सेस। शाही महारानी रॉयल मिठाई एंड नमकीन। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 6235 8840 और लॉग ऑन टू शाही महारानी.com।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया अकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशन्स। दैट टू

0: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
1: आप एक टास्क करके दो टास्क करके भी ये बोल देते हो कि यार मेरा मन भर गया है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। एक नौकरी नहीं करी जा रही है, लोग दो दो नौकरियां कैसे कर रहे हैं, कैसे संभाल रहे हैं, जरा बताना। हाँ, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। एनीवेज, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि लोग नौकरी कैसे संभाल रहे हैं, तो भाई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से पूछो, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज से पूछो, मल्टीपल टास्किंग ये लोग कर रहे हैं। हाँ, बस फर्क इतना है कि ये अपने बॉसेस के लिए नहीं, खुद के लिए कर रहे हैं। हाँ, एनीवेज, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी कि सलमान खान इस उम्र में भी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। आप किस खेत की मूली हैं? हां जी, सलमान खान ऑलरेडी रियलिटी शो में होस्ट करने के लिए जा रहे हैं और मीनवाइल बॉम्बे के स्टूडियो में इनकी अपकमिंग मूवी का 50 डे का शूटिंग स्केड्यूल तय हो चुका है। हां जी, 50 दिन लगातार ये काम करने वाले हैं। तो देखो भाई, त्योहारों की छुट्टियां हर कोई नहीं लेता है, जरा समझा करो बात को, माहौल को। काम काम होता है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा सलमान कह रहे हैं यार। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन
2: जोश में रहो।
3: चलो भाई, जब स्वागत करने की बारी आती है ना, तो थाली लेकर पहुंचा जाता है, तिलक कुमकुम किया जाता है, मुंह दिखाई दी जाती है और भी बहुत सारी चीजें करी जाती है। बाय द वे, आप क्या जब किसी की मुंह दिखाई होती है, पहली बार किसी का चेहरा दिखाया जाता है, तो कैसे किया जाता है, प्रोसीजर क्या होता है, जरा बताना मुझे। हाँ बता देना 9151-8963 पे टेक्स्ट करके। फिलहाल मैं आज इनपर रेडियो मसीर 24/7 लाइव पर आपको बताना चाहेगी, मुंह दिखाई हो चुकी है इंस्टाग्राम पर किसकी? हाँ जी, रह नहीं पाए ये सोशल मीडिया से दूर, बिल्कुल अब जाकर ये इंस्टाग्राम पर आ चुके हैं। सो डेफिनेटली इनका बुक रीडिंग का शौक ना बहुत पुराना है और उसी के साथ इन्होंने इंस्टाग्राम पे एंट्री ली है। तो एक्टर्स ऐसे सरप्राइजेस देते रहे तो हमारा मन लगा रहे। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मन लगाने वाले गाने मेरे यानी आरजे नुपुर के साथ मस्ती मॉर्निंग शो पर।